निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 40। और अब समय है, जी हाँ, 6:55 होने को है। लीजिए सुनते हैं पहले संस्कृत, हिंदी और फिर इंग्लिश में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7%-मिका त्रैमासिकवृद्धिः भारतस्य आर्थिकसामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्धगतिरोधात् नीतिसम्बद्धगतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः सङ्घर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यंतम शांतिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: निरंतर क्रियमाणानाम आलोचनानाम प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 5.2 लक्ष कोटि रूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ SRCC महाविद्यालयस्य पूर्वछात्रान् अतिविशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज़ इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्ववित्तमन्त्री अरुणजेटली अपि SRCC महाविद्यालयस्य पूर्वछात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्वछात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालरूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17.2 अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालरूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तरप्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमन्त्रिपदमपि अलङ्कृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धारदलानि चिलिमे सुरंगे उद्धारकार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धारकार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वारपर्यन्तं सम्पर्कमार्गस्य निर्माणकार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञानविभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तरपूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिमबंगाल सिक्किम बिहारोत्तरप्रदेशोत्तराखण्ड पंजाब चण्डीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। इति वार्ताः।

0: जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन

0: योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
4: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
6: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: झारखंड सरकार

0: के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉल्स अपॉन यंग इंडियंस टू बिल्ड ग्लोबल

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों से दुनिया की क़यादत करने के काबिल आलमी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म

0: 25 नवंबर को ख़त्म होनी थी। राष्ट्रपति भवन की जानिब से कल जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर शर्मा के तकरर का इतलाक़ उनके ज़रिए ओहदा संभालने की तारीख से होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कौमी जांच एजेंसी NIA की खसूसी अदालत ने झीराम वादी नक्सली हमले में सभी 10 मुलजिमीन को मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार करार दिया है। इस मामले में कुल 11 मुलजिमीन के खिलाफ केस चलाया गया था, जिसमें से एक मुलजिम की दौरान समाअत मौत हो गई। अदालत ने 2 खवातीन समेत सभी 10 मुलजिमीन को 29 लोगों को कत्ल करने और दीगर 15 अफराद को कत्ल करने की कोशिश का कसूरवार करार दिया। अदालत ने सज़ा की मुद्दत का फैसला 16 सितंबर के लिए महफूज कर लिया है। मई 2013 में माओवादियों ने झीराम वादी में कांग्रेस रहनुमाओं के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही गोलीबारी में 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कौमी जाँच एजेंसी NIA ने इस मामले की तफ्तीश की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को हो रहे ब्रिक्स समिट के तनाजुर में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वज़राए खजाना और कारोबारी रहनुमा आई ब्रिक्स समिट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। ये 2 रोज़ा समिट 21 ब्रिक्स रुकन रियासतों और साझेदार मुल्कों के खुद मुख्तार सरमाए को काबिल एतबार बुनियादी ढांचे, तवानाई और डिजिटल सलाहियत प्रोजेक्टों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खुद मुख्तार फंड्स, पेंशनर फंड्स और आई ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रही प्राइवेट कंपनियां मिलकर 1 खरब अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी रखती हैं। इस दौरान ब्रिक्स मईशतों में सरहद पार सरमायाकारी, डॉलर के अलावा दीगर करेंसियों में तस्फीए और अदायगी निज़ाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये समिट ऐसे अहम वक्त पर मुनक़िद हो रहा है जब ब्रिक्स मईशतें तिजारत के तरीक़ेकार को बदलने, अमरीकी महसूलात के दबाव और डॉलर में अदायगी की ज़्यादा लागत से मुताबिकत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारत साल 2026 की ब्रिक्स सदारत के तहत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेज़बानी करेगा। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह कल रात 3 रोज़ा दौरे पर गोवा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो मगरबी इलाकाई काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। आज वो वजारत दाखला की एक मीटिंग की सदारत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और BJP के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: जनाब अमित शाह आज अपनी मसरूफियत का आगाज़ गोवा से मुतालिक अहम उमूर का जायज़ा लेने की मीटिंग के साथ करेंगे। वो BJP के नए तामीर करदा रियासती दफ्तर अटल भवन के इफ्तिताह से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब शाह आज पार्टी की रियासती कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। उनकी कल की मसरूफियात में मगरबी इलाकाई कौंसिल की मीटिंग और गोवा पुलिस को सदर का पुलिस करार पेश किया जाना शामिल है। पंजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मुनशिया से मुतालिक इंजबाती इदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने नई दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाने वाली और गलत लेबल वाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम के खिलाफ मरबूत कार्रवाई तेज़ कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गलत लेबल वाली और जाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम से मुतालिक मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदेही के लिए मुसलसल निगरानी कर रही है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जब भी किसी मुजरमाना हरकत या सरगर्मी से मुतालिक कोई इत्तला सामने आती है तो दवाओं के मेयारात को कंट्रोल करने की मरकजी तंजीम CDSCO दिल्ली पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करती है। इस मुसलसल

0: क्रिकेट के टी20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: अब है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 8:45 और ये समय है कार्यक्रम साहित्यिकी का। लीजिए सुनते हैं।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्यिकी। श्रोताओं, भारतेंदु युग के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य ने एक अभूतपूर्व मोड़ लिया। पद्य में ब्रजभाषा की प्रधानता से लेकर गद्य और कविता दोनों में खड़ी बोली की सर्वमान्य प्रतिष्ठा तक, यह कालखंड हिंदी के नवजागरण, भाषिक परिष्कार और राष्ट्र चेतना के विकास का साक्षी रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती संपादन के अनुशासन से संवरा यह युग आगे चलकर छायावाद के अंतर्मुखी सौंदर्य, प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ और युगीन आंदोलन की सशक्त अभिव्यक्ति बना। साहित्य की इसी ऐतिहासिक विकास यात्रा, विधागत प्रयोगों और भाषिक संक्रांति की पड़ताल के लिए लीजिए सुनिए भारतेंदु के बाद का हिंदी साहित्य विषय पर परिचर्चा।
3: नमस्कार, आज की साहित्यिक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस परिचर्चा में हमारे बीच आज 3 प्रमुख विद्वान शामिल हैं और एक विदुषी भी हैं उनमें, और प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं और दलित साहित्य लेखन में इनका विशेष योगदान रहा है, और दूसरे हमारे साथी हैं प्रोफेसर विनय विश्वास जो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में इस समय अध्यापनरत हैं और नई कविता के क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता रही है। इन्होंने इस पर अपना PhD का शोध कार्य भी किया है और स्वयं भी बड़े अच्छे कवि हैं, तो बड़े संयोग की बात है आज हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवंती जाखड़ जी जो इग्नू में सह आचार्य हैं, और मैं हूँ प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिंदी विभाग में मैं कार्यरत हूँ। और आज की इस परिचर्चा में भारतेंदु हरिश्चंद के बाद का हिंदी साहित्य, और एक बहुत ही बड़ा विषय है, लगभग 125 साल का इसमें समय है और इस पर आज हमारे विद्वान साथी इस पर बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम बात अपने विनय विश्वास जी से शुरू करें, क्योंकि साहित्य में कविता की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। तो भारतेंदु जी के बाद की जो कविता है वो आज कहाँ तक पहुँची है, थोड़ा सा संक्षेप में द्विवेदी युग छायावाद का हल्का सा उल्लेख करते हैं, और आज समकालीन कविता पर आना मुझे लगता है जरूरी है। तो मैं चाहूँगा विनय जी से हम अपनी बात की शुरुआत करें।
4: बहुत धन्यवाद रवि जी। विषय सचमुच जैसा आपने कहा बहुत बड़ा है, हर दृष्टि से बहुत विविध है और बहुत गहन है। इतने कम समय में इस विषय के साथ पूरा पूरा न्याय करना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकें हम कोशिश करते हैं। भारतेंदु से आधुनिक युग की शुरुआत होती है, हिंदी में जिसे नवजागरण कहा गया उसकी शुरुआत होती है, और भारतेंदु युग से रीतिबद्धता से हिंदी साहित्य पूरी तरह से अलग होता है
3: जी,
4: और दरबारी साहित्य से बिल्कुल अलग कर दी जाती है कविता जैसे ही भारतेंदु का उदय साहित्य के आकाश में होता है। और यही नवजागरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में जब वे सरस्वती का संपादन कर रहे थे, सरस्वती पत्रिका ने बड़ी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा सरस्वती में उन्होंने विविध विषयों पर जो साहित्येतर विषय हैं उन विषयों पर भी ऐसे ऐसे निबंध छापे कि हिंदी का ज्ञान विज्ञान का भंडार और ज्यादा बढ़ता चला गया, भरता चला गया। और उनकी दूरदृष्टि का एक प्रमाण ये भी है कि हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती में पहले पहल उन्होंने छापी थी, और इस तरह वर्षों बाद जो हिंदी साहित्य में सुनाई दी दलित विमर्श की आहट वो उन्होंने पहले ही सुन ली थी।
3: और उनका एक और बड़ा योगदान है द्विवेदी जी का कि उन्होंने जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का काम जिसकी हम आज बात करते हैं आजादी के बाद, उसकी शुरुआत मानकीकरण की उन्होंने की थी सरस्वती के माध्यम से,
4: शुरुआत उन्होंने की थी। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में हुए और उन पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रभाव था,
3: अपना गुरु मानते थे उनको,
4: वो अपना गुरु मानते थे उनको, ठीक कह रहे हैं आप। इसके बाद हिंदी में छायावाद आया और देश प्रेम को प्रकृति के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से, प्रश्नाकुलता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई। नए विषय और नई भाषा छायावाद लेकर आया था, छायावाद से पहले हिंदी पर खड़ी बोली पर खास तौर से ये आरोप था कि वो शायद सुकुमार भावों को वहन नहीं कर सकती।

0: लेकिन छायावाद ने इस धारणा को बिल्कुल निर्मूल सिद्ध किया। इतिहास ने बताया और छायावादी कवियों की भाषा ने बताया कि खड़ी बोली कविता में सुकुमार से सुकुमार भाव भी व्यक्त किए जा सकते हैं। लेकिन छायावाद जितनी तेजी से आया था, उतनी ही जल्दी उसकी रूढ़ियां भी बनी और उसके बाद फिर से हिंदी कविता की धारा में परिवर्तन हुआ। अनेक रूप धारण करके अनेक दिशाओं में वो प्रवाहित हुई, जिनमें बच्चन और भगवती चरण वर्मा की कविता एक तरफ थी, प्रगतिवाद की कविता दूसरी तरफ थी, प्रयोगवाद और नई कविता तीसरी तरफ थे। सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस दौर में दिखाई देता है हिंदी कविता के इतिहास में, वो कविता की भाषा को लेकर है।
1: जी
0: और भाषा केवल भाषा नहीं होती, उसके साथ अनुभूति अनिवार्य तौर पर जुड़ी रहती है। तो वो एक बुनियादी परिवर्तन है। पहले कविता को जहाँ सुनकर वाह वाह करने का माध्यम माना जाता था, जब कविता की भाषा पढ़ने वाली हो गई तो कविता को पढ़कर अनुभव करने और बेचैनी पैदा करने और सवाल पैदा करने का माध्यम भी माना गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था। श्रोता पाठक में रूपांतरित हुआ और जो भावनात्मक संबंध था कविता से, वो वैचारिक और तार्किक संबंध में रूपांतरित हुआ।
1: विनय जी, मैं और आगे लेके चलता हूँ आपकी ही बात को। प्रयोगवाद से नई कविता पर पहुंचे। अब नई कविता के बाद 21वीं सदी में जो हम कविता की बात करेंगे, पिछले 25 सालों की, उसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता कुछ जाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी यही है। मैंने थोड़ा सा अनुसंधान करने की कोशिश की है समकालीन कविता पर, वही मैं थोड़ा साझा करता हूँ। समकालीन कविता नाम भी बहुत व्यापक है इस विषय की तरह से ही। उसमें भी बहुत सारे रूप हैं, उसके बहुत सारी अंतरधाराएं हैं और समकालीन कविता को बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं। लेकिन नामकरण का इतिहास यही है कि जो नाम सबसे ज्यादा प्रचलित होता है
1: जी,
0: सर्वसाधारण में, उसी को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। समकालीन कविता नाम भी एक ऐसा ही नाम है। सन 1960 के बाद की हिंदी कविता को समकालीन कविता मोटे तौर पर कहा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि इसके बहुत सारे रूप हैं, अगर बहुत मोटे तौर पे इसका विभाजन करने की कोशिश करें तो चार हिस्सों में तो बहुत साफ साफ हिंदी कविता की धारा दिखलाई देती है समकालीन कविता के नाम से। एक दौर था 60 के बाद जिसमें कविता के बहुत सारे आंदोलन चले, बहुत सारे छोटे छोटे
1: जी,
0: बीसियों आंदोलन चले,
1: 52 नाम
0: और
1: दिए थे जगदीश गुप्त
0: जी
1: जी ने अपने उसमें
0: हाँ,
1: पुस्तक में।
0: अकविता
1: हाँ
0: और इस तरह के
1: जी
0: बहुत सारे कविता के विविध आंदोलन और अकविता,
1: जी
0: समकालीन कविता का एक रूप उस रूप में हमारे सामने आया। दूसरा रूप नक्सल प्रभावित कविता के रूप में हमारे सामने आया। तीसरा रूप जिस कविता के रूप में हमारे सामने आया उसको 8वें दशक की कविता के नाम से पुकारा जाता है। और चौथा रूप जो बिल्कुल समकालीन है, आज के समय की बात करता है, वो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के बाद की कविता है। तो मोटे तौर पे ये चार रूप हैं और चारों की पृष्ठभूमि अलग-अलग है। चारों अलग-अलग समाज और अलग-अलग परिस्थितियों में चारों ने रूप लिया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा, जो एकदम नया रूप है वैश्वीकरण के बाद आया है हमारे सामने, उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। सन 1980 के बाद निजीकरण, भूमंडलीकरण और संचार क्रांति ने हमारे जीवन को बुनियादी तौर पे बदल दिया। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जेरेमी रिफ्रिकन ने अपनी पुस्तक एंट्रोपी में ये लिखा कि अमेरिका में खाद्य पदार्थों के पूरे खर्च में सिर्फ 20% ऐसा है जो खाद्य पदार्थों को बनाने पर, उनके उत्पादन पर खर्च होता है। 80% उसकी पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग पर खर्च होता है। तो ये समकालीन विकास को बताने वाला एक ऐसा उदाहरण है कि हमारा ध्यान उत्पादन पर जितना है, उससे कई गुना ज्यादा उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पर है। दुनिया छोटी हो गई है। समकालीन कविता ने ये देखा कि छोटी सिर्फ दुनिया नहीं हुई है, दुनिया के छोटे होने के साथ साथ संवेदनशीलता और मनुष्यता भी छोटी हुई है। अरुण कमल की एक कविता पंक्ति है, इतनी छोटी हो गई है दुनिया, एक नक्शे भर, जब आप आराम से खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल पास में कोई भूख से दम तोड़ रहा है।
1: बहुत
0: भूख
1: मार्मिक।
0: से दम तोड़ता आदमी आराम से खाना खाने में कोई खलल नहीं डालता, दुनिया इतनी छोटी हो गई है। और भूमंडलीकरण के बाद जो समकालीन कविता हमारे सामने उभर कर आई, उसके तीन रूप खासतौर से हमारा ध्यान खींचते हैं। एक दलित विमर्श की कविता है, दूसरी स्त्री विमर्श की कविता है और तीसरी तरह की कविता है बाजार और उसके प्रभाव को दिखाने वाली कविता। यहाँ मैं अपनी चर्चा केवल दलित विमर्श की कविता तक सीमित रखूंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। ये हम सब जानते हैं कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदियों से दलित यातनाएं सहते आए हैं और ये यातनाएं इतनी ज्यादा हैं कि वे उनको लगातार सहते रहे हैं, कहने का अवकाश वो नहीं पा सके। लेकिन सन 80 के बाद

0: उनके कविताएं समकालीन कविता के प्रमुख हिस्से बने। संभवतः शिक्षा के कारण, विकास के कारण स्थिति में इतना सुधार हुआ कि यातनाओं को केवल सहना छोड़कर वे कहने का अवसर भी पा सके, और इस अवसर का भरपूर उपयोग उन्होंने किया। समकालीन कविता उससे समृद्ध हुई। बहुत बुनियादी सवाल दलित विमर्श की कविताओं में उठाए गए। समकालीन कविता में जहाँ गांव के प्रति एक खास तरह के आकर्षण और मोह का वातावरण था, तो उस वातावरण को छिन्न भिन्न करती हुई अनिल कुड़िया नगरी की एक कविता सामने आई, जिसने गांव की सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुएं का पानी छू लिया उसने तो पूरे गांव ने मिलकर उसे मारा। दुनिया जानती ही नहीं इनका ये चमत्कारी भाईचारा। ये गांव की सच्चाई एक दलित कवि हमारे सामने लेकर आया। और इस सिलसिले में एक और कविता मैं यहाँ उद्धृत जरूर करना चाहूंगा। एक कवि हैं चंद्रभान, उन्होंने एक कविता लिखी कालू की प्रभात फेरी। कालू दलित है, सुबह सुबह उस सीवर में उतरता है जहां मोमबत्ती भी जलने से इनकार कर दे। सुबह सुबह कालू को उस सीवर में उतरना पड़ता है और उस सीवर से वो गुबरीला बनकर बाहर निकलता है। ऐसा मेहनतकश इंसान है वो, जिसे दुनिया का सबसे घिनौना कीड़ा बनना पड़ता है। उस सीवरी जिंदगी में दुनिया का नरक ढोना ढकेलना पड़ता है, जिसके सामने हिटलरी गैस चैम्बर भी क्या होंगे।
1: बहुत बढ़िया विनय जी, आपने बहुत संक्षेप में सारी बातों को ले लिया, और मैं इसीलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने जो बिंदु उठाए हैं उनको लेकर के आप चले। और मैं चाहूँगा कि आगे आज हम शिवराज सिंह बेचैन जी से जानना चाहेंगे कि जो हिंदी का जो गद्य है उसमें, अभी कविता की बात हुई तो मैं चाहता हूँ कि भारतेंदु के बाद का जो गद्य साहित्य है उसमें भी अगर हम कथा आत्मकथा और उनको लें तो उसके बारे में थोड़ा अपना विचार दीजिए।
2: जी धन्यवाद। ऐसा है कि भारतेंदु के समय की जो चिंता है और जो चेतना है, उसमें एक राष्ट्रीयता का भाव है और उसमें एक स्वतंत्रता की एक कामना है। वही एक बीज रूप में आगे विकसित होता है, क्योंकि भारतेंदु कहते हैं अंग्रेज राज जो है इसमें हमारे देश का धन विदेश जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कवि केवल भाषा की ही बात नहीं कर रहा, लेखक केवल भाषा की ही बात नहीं कर रहा, वो जो वित्तीय व्यवस्था है, जो आर्थिक संकट है, जो गुलामी है, उसकी भी चिंता कर रहा है। तो ये जो दृष्टि है ये साहित्य में सुधार की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि सुधारक पैदा होते हैं। स्त्री की चिंता करती है, भारतेंदु ने तो पत्रिकाएं निकाली महिलाओं के लिए, तो वो जानते हैं कि ये जो समाज है वो अकेले पुरुष से विकसित नहीं होगा, चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो समाज का विकास हो, चाहे वो जो है बोलियों का विकास हो, उसमें स्त्री की सहभागिता बहुत आवश्यक है। ये जो दृष्टि है और भारतेंदु की जो चेतना का वृक्ष है भाषा का, वो एक तरह से बट वृक्ष की तरह वो पत्रकारिता में फैलता है, वो कविता की तरफ जाता है, उस पर फिर बाद आ जाते हैं प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब। अब इसी क्रम में हम आप देखते हैं कि स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है वो उन लोगों में भी पैदा होती है जो सामाजिक रूप से दास जैसी स्थिति में थे। यहाँ से आप दलित साहित्य का उदय कह सकते हैं, वहीं से स्त्री भी अपनी पहचान बनाती है। तो ये सारी चीजें फिर आप देखेंगे कि आप गद्य की बात कर रहे थे, उसमें कविता से निकलकर कहानी का दौर आता है और कहानियों में भी फिर नई कहानी आती है, यथार्थवादी कहानी आती है और आदर्शोन्मुखी कहानी आती है। तो कहानी भी कई रूपों में आती है। पहले ये था कि शुरू में कुछ शिष्ट लोगों तक ही साहित्य सीमित था, कुछ अभिजात तक ही साहित्य सीमित था, लेकिन इसका विकास धीरे धीरे दलित साहित्य के रूप में हुआ और आत्मकथाएं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम इसलिए हो गई कि वो जो सच्चाई, जो भोगी हुई सच्चाई थी, वो किसी दूसरे के पास था नहीं। अब देखिए अंतर क्या आया कि जो लोग अपने बारे में सुनने के लिए तरसते थे वो लोग कहना शुरू किए। यानी प्रेमचंद तक आप देखेंगे कि वो घिसु माधव की कहानी कह रहे हैं। ये जो नया विकास हुआ उसमें ये हुआ 80 के बाद कि अब घिसु माधव खुद कहानी कह रहे हैं, अपनी कहानी कह रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता देश ने दी, संविधान ने दी, विकास हुआ, उस क्रम में हमने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज पाई कि जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि हमारी आजादी के बारे में कोई कहे, हमारे अधिकारों के बारे में कोई, हमारे सम्मान के बारे में कोई कहे, उनके अंदर ये बात पैदा हुई कि हम कहेंगे अपने बारे में, हम सच जानते हैं। तो ये

0: पता मुझे
1: बहुत बड़ी बात आपने कही।
0: जी
1: तो इस प्रकार से समय के साथ साथ जो है कविता ही नहीं गद्य भी अपना रूप बदलता रहा
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: और जो भी समकालीन समस्याएं हैं खासकर जो हाशिए का समाज जिसको कहा
0: जी
1: जाता
0: जी
1: था
0: जी वो
1: उसको
0: आगे
1: मुखर
0: आगे
1: अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्रोत्तर काल में ही मिली है।
0: ये
1: तो
0: बड़ा परिवर्तन है।
1: जी बड़ा परिवर्तन है। तो मैं चाहूँ कि आज हम डॉक्टर राजवंती जाखड़ जी से भी ये जानें कि भारतेंदु युग के बाद जो स्त्री साहित्य है उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या उसमें नयापन आया, मैं थोड़ी जानकारी चाहूँगा
0: बहुत
1: श्रोताओं
0: अच्छा
1: से।
0: सवाल है सर आपका। स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं तो स्त्री की जो स्थिति है वह देह से परे, से पहले हम देखेंगे कि आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल से होते होते स्त्री के एक रूप को देखा गया जिसमें एक देह के रूप में उसका परिचय था। लेकिन भारतेंदु युग के बाद हम देखते हैं, जैसे अभी बेचैन जी ने भी हमें बताया, कि किस प्रकार से लोगों का कहने का तरीका बदला। और जब स्त्री केंद्र में आई, जो वह पढ़ती थी, जो अभिव्यक्ति मौन थी, उसे आवाज दी स्वयं स्त्री ने। और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वह है महिला आत्मकथाएं। महिला आत्मकथाओं में आप देखेंगे कि कौशल्या बैसंत्री से होती हुई अभी सिकंजे के दर्द तक की जो कहानी है, लंबी जो कहानी है, उसमें स्त्रियों ने अपने आप को रखा। चाहे वह प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या हो, रमणिका गुप्ता की हादसे हो, या फिर मनु भंडारी की एक कहानी यह भी हो, पद्मा सचदेव की बूंद बावड़ी हो, सभी महिलाओं ने अपने जीवन को जब स्वयं लिखा तो उन्होंने, जैसे सर ने अभी बताया कि भोगा हो यथार्थ,
1: भोग
0: जब व्यक्ति स्वयं झेलता है तो वह अपनी कलम के माध्यम से उसे आवाज देता है। और वह आवाज जो है स्त्री ने देनी शुरू की इस दौर में। और वह जो थी उसने अपने पारिवारिक समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को और देह से मुक्ति और पितृसत्ता से मुक्ति, इस तरह के मुद्दों को उसने उठाना शुरू किया।
1: हाँ, और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम ध्यान दें तो कृष्णा सोबती जी ने जो परिवर्तन की शुरुआत की उसी को बाद की महिला कथाकार आगे लेके
0: बहुत
1: चली।
0: बढ़िया
1: तो
0: सर
1: बिना
0: आपने,
1: कृष्णा
0: हाँ
1: सोबती का
0: हाँ
1: उल्लेख किए हम आगे
0: हाँ
1: बढ़ ही नहीं
0: कृष्णा,
1: सकते
0: कृष्णा
1: जिसे।
0: सोबती का जिंदगी नामा और उनका जो पूरा जीवन अगर हम
1: हाँ, दार से
0: देखेंगे
1: बिछड़ी
0: तो
1: सारी
0: किस
1: उनकी।
0: प्रकार से जो है उन्होंने साहित्य का नव्य, जिसे कहेंगे नव सृजन किया। स्त्री ने अपने आप को केंद्र में रखा, अपनी बात स्वयं कहनी शुरू की। और उसके बाद अमृता प्रीतम को आप ले सकते
1: अमृता
0: हैं,
1: प्रीतम
0: हाँ, उन्होंने जो अपना रसीदी
1: रसीदी
0: टिकट
1: टिकट, हाँ
0: और उनका जो उपन्यास है पिंजर, अगर देखेंगे तो उसमें किस प्रकार की अभिव्यंजना उन्होंने की है। स्त्री ने अपने आप को एक चेतना के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया कि मैं मात्र देह नहीं हूँ, मेरा जो दायरा है वह सिर्फ देह तक सीमित नहीं है। उसने अपनी देह को पूंजी मानने से इनकार किया कि मेरी देह, जिसे अब तक तो पूंजी समझा गया है, मैं देह नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ और मुझे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। और एक संवेदनात्मक रूप से जब स्त्री ने रखा तो हम देखते हैं कि पहले जो समाज था उसमें अगर हम अपनी ही दादी नानी को लें, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता से जब अर्थ बीच में आया, स्त्रियां जब आत्मनिर्भर होनी प्रारंभ हुई, तो आज आधुनिकता के युग में हम देखते हैं कि हर स्त्री आत्मनिर्भर बनना चाहती है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो उसे समस्याएं हो रही हैं, चाहे वह घर और परिवार के बीच की समस्याएं हैं, वह अपने लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। और हर मंच पर उसके अंतर का जो अंतर्द्वंद है वह उसको रख रही है, चाहे वह कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे आत्मकथाएं हो। तो मूल रूप से भारतेंदु के बाद स्त्री के जीवन ने एक नया आयाम स्थापित किया है और वो स्वतंत्र हुई है, आर्थिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और वह निरंतर अपनी चेतना का स्तर जो है वह, जिसे कहेंगे कि चैतन्य के प्रकाश में, प्रज्वलित कर रही है और अपनी बातों को रखने में सक्षम पाती है। ये
1: बहुत
0: बहुत बड़ा परिवर्तन
1: बहुत बहुत
0: नजर
1: सही
0: आया।
1: कहा आपने कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य में जो स्त्रियों का योगदान है साहित्य रचना में उसने पूरी धारा को ही बदला है, और स्त्रियों की जो उनकी अपनी अंदर की जो भावनाएं थी उनको अभिव्यक्त करने में बहुत बड़ा योगदान है स्त्री साहित्य का। और साथ साथ साहित्य में हम देखते हैं सर कि व्यंग्य जो है हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि व्यंग्य जो चीज़ कह पाता है थोड़े शब्दों में वह प्रायः बड़ी बड़ी कथाओं में या कविताओं में नहीं आता।
0: जी
1: और इसकी शुरुआत हम जानते हैं भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु ने ही की, उनसे बड़ा व्यंग्यकार मुझे लगता है उस
0: बिल्कुल
1: दौर में कोई
0: बिल्कुल।
1: था ही नहीं। एक से एक बड़ी रचना उन्होंने लिखी, और उसके बाद
0: व्यंग्य पर तो प्रोफेसर रवि शर्मा आपने बहुत काम किया है।
2: हाँ
1: हाँ,
2: सर, और
1: तो
2: आपने एक
1: आप
2: अच्छी कविता
1: गद्य
2: भी
1: में
0: लिखी
1: व्यंग्य
2: है।
1: पर
0: हाँ,
1: कुछ बताएं
0: तो
1: हम
0: मैं
1: अपना
0: आप
1: ज्ञान
0: रखिए, अपनी
1: वर्धन
0: बात
1: करें।
0: रखिए। हाँ
1: जी, मैं वही चाह रहा था कि थोड़ी बात व्यंग्य पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि व्यंग्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
0: बिल्कुल
1: भारतेंदु से आगे हम
0: बिल्कुल।
1: आगे बढ़ते हैं। तो जो गद्य में जो व्यंग्य को स्थापित करने में जो शिखर पुरुष कहलाते हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जो है उन्होंने गद्य को एक विधा के रूप में मान्यता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, वरना
0: सर
1: गद्य में हर जगह कविता में हर जगह व्यंग्य रहता ही था, लेकिन उसको एक अलग पहचान देने का काम जिस त्रयी ने किया, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविंद्रनाथ त्यागी, इसको बृहत त्रयी भी कहा जाता है। और इसमें शिखर पुरुष अगर कहा जाए तो हरिशंकर परसाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को पता चले कि हिंदी में इनका व्यंग्य के बारे में क्या विचार था। मैं उसको संक्षेप में उद्धृत करना चाहूंगा कि हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं, व्यंग्य होता क्या है, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा सा मन में लोगों के भ्रम भी कई बार रहता है।

0: तो उन्होंने खुद लिखा है हरिशंकर प्रसाई जी ने, सही व्यंग्य व्यापक जीवन परिवेश को समझने से आता है। व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश की विसंगति, मिथ्याचार, असामंजस्य, अन्याय आदि की तह में जाना, कारणों का विश्लेषण करना, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना, इससे सही व्यंग्य बनता है। जरूरी नहीं कि व्यंग्य में हंसी आए। यदि व्यंग्य चेतना को झकझोर देता है, विद्रूप को सामने खड़ा कर देता है, आत्म साक्षात्कार कराता है, सोचने को बाध्य करता है, व्यवस्था की सड़ांध को इंगित करता है और परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है, तो वह सफल व्यंग्य है। जितना व्यापक परिवेश होगा, जितनी गहरी विसंगति होगी और जितनी तिलमिलाहट देने वाली अभिव्यक्ति होगी, व्यंग्य उतना ही सार्थक होगा। तो मुझे लगता है इस परिभाषा में उन्होंने पूरा व्यंग्य का, जैसे कहना चाहिए, क्या उद्देश्य है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या उसका महत्व है, उसको उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया स्पष्ट करने का। इससे बढ़िया परिभाषा मुझे अभी तक नहीं मिली है व्यंग्य की, और इसी को आगे उनके जो समकालीन साहित्यकार थे उन्होंने भी बढ़ाया है। बहुत बड़ा विषय अपने आप में है, लेकिन समय की सीमाओं में मैं जरूर चाहूंगा कि उसके बाद इस परंपरा में और कितने व्यंग्यकार हुए। हालांकि नाम लेने में हमेशा ये संकट रहता है कि जिसका नाम छूट जाता है वो नाराज होता है कि मेरा नाम नहीं लिया, तो लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम अवश्य ही आने चाहिए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उसमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल जी। उनके उपन्यास की बात हम हमेशा करते ही हैं। उसी परंपरा में डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने भी अपने समय बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्य लिखे हैं, और केपी सक्सेना, डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, डॉक्टर सुरेश कांत, कृष्ण चराटे, सूर्य बाला, पूरन शर्मा, बालेंद्र शेखर तिवारी, डॉक्टर रमा शंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर गोविंद व्यास, डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, डॉक्टर शेरजंग गर्ग, डॉक्टर अशोक चक्रधर, डॉक्टर मनोहर श्याम जोशी, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, डॉक्टर सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने हिंदी व्यंग्य साहित्य का इतिहास लिखा है, और उन्होंने पहली बार हिंदी व्यंग्य साहित्य को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। जब हम शुक्ल जी की बात करते हैं इतिहास को लेकर के, तो व्यंग्य साहित्य का इतिहास लिखने में डॉक्टर सुभाष चंद्र की बड़ी भूमिका रही है। और आलोक पुराणिक, यज्ञ शर्मा, गिरीश पंकज, मनोहर पुरी, राजेंद्र सहगल, सत्यपाल सुष्म, सुधीर ओखदे आदि अनेक व्यंग्यकार हैं जिन्होंने डॉक्टर हरिशंकर परसाई द्वारा जो उन्होंने परंपरा शुरू की थी उसको ये आगे लेकर के और समकालीन स्थितियों पर बहुत करारे व्यंग्य किए हैं और तिलमिलाते हैं और दर्शकों को, श्रोताओं को लुभाते हैं। डॉक्टर राजवंती जी, मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान दौर में इस समय जो स्त्री साहित्य लिखा जा रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है, उसमें क्या अलग है, कहाँ स्त्री की छटपटाहट किस रूप में व्यक्त हो रही है?
1: आपका सवाल बहुत अच्छा और प्रासंगिक सवाल है। इसमें अगर हम आज आधुनिक स्त्री की बात करते हैं तो कविताओं में, कहानियों में, इसके साथ साथ अभी मूल जो विषय है वो महिलाएं अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से कह रही हैं। आत्मकथा विधा से यह उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति जस का तस वही व्यक्त करता है जो वह अपना जीवन जीता है। जीवन कोई किताब नहीं है कि एक पृष्ठ के बाद हम दूसरा जो पृष्ठ है पलटेंगे और हमारा जीवन शुरू हो जाएगा। जीवन पल पल का संघर्ष है, रोज की जो प्रतिदिन को अपने आप को बेहतर करने का एक प्रयास है। स्त्री वही कर रही है, वह एक ऐसे समय में है जहाँ पे वह सशक्त भी है, समर्थ भी है, और उसके साथ साथ जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो संरचना है हमारे समाज की, उसको वह महसूस भी कर रही है और उन समस्याओं का सामना भी कर रही है, जिसमें घर परिवार की सबसे मूल धुरी स्त्री होती है। वही स्त्री जब आज अनेक तरह की चीजें हमें देखते हैं समाज में कि प्रेम और हिंसा का एक ऐसा रूप हमारे सामने आता है कि कई रूपों में आज वर्तमान में जब हम समाचार वगैरह देखते हैं तो पाते हैं कि स्त्रियां इतनी हिंसक क्यों हो गई हैं। अभी पीछे एक लंबी जो परंपरा चली है जिसमें हत्याएं हो रही हैं पुरुषों की, और इस तरह का जो नया जो मुद्दा जो सामने आ रहा है उसमें हम स्त्री को कहाँ पा रहे हैं, साहित्य के माध्यम से इसको किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कौन सी वह उनके अंदर की कुंठा है या कौन सा उनका वह एक ऐसा पक्ष है जो उजागर ही नहीं हो रहा है और एक नए रूप में स्त्री सामने आ रही है।
0: उनका आक्रोश है, मुझे लगता है आक्रोश, हाँ, दबा हुआ आक्रोश है जो
1: बहुत ऐसा आक्रोश जिसे कहीं ना कहीं हम पाते हैं। परंपराएं जो टूट रही हैं, मर्यादाएं जो लांघी जा रही हैं, उसके पीछे कौन सी ऐसी चीज है जो एक स्त्री को अंदर से पीड़ित कर रही है और वह आक्रोशित रूप सामने आ रहा है, इसकी एक लंबी जो गहन जो चिंतन है उसकी बहुत आवश्यकता है। और इसको स्त्रियां कभी लेख के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से, कभी कविता के माध्यम से, और वर्तमान में जो महिला लेखन है, जब साहित्य की जब हम बात करते हैं तो मैं सिकंजे के दर्द की बात करना चाहूंगी। शीला टागबोरे ने उस आत्मकथा में स्पष्ट लिखा है कि वह भी नौकरी करती हैं, उनके पति भी नौकरी करते हैं, लेकिन किस प्रकार से जब वह नौकरी करती हैं तो पूरा जो अर्थ यानी कि जो पैसा वो उनको बस में जाते समय किराए के लिए भी उनको पैसा गिन के दिया जाता है, तो यह जो दोहरी मानसिकता है इसका चित्रण महिलाएं अपने साहित्य में कर रही हैं और इसमें गहरे बदलाव की आवश्यकता मैं महसूस करती हूँ।
0: बहुत अच्छा आपने बताया। मैं विनय जी से फिर एक बार अनुरोध करूंगा। विनय जी, अभी जो हम 21वीं सदी में जिसमें चल रहे हैं 25

0: साल हो गए हैं, इसकी कविता में कुछ आप ऐसी विशेष कुछ ऐसी बातें पाते हैं जो आज के समकालीन दृश्य से समाज से जुड़ती हैं, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में कुछ अपनी बात
1: बिल्कुल,
0: रखें।
1: समकालीन कविता जैसा मैंने पहले कहा, उसके तीन रूप हैं। एक दलित विमर्श की कविता है, एक स्त्री विमर्श की कविता है, और तीसरा एक महत्वपूर्ण रूप है जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, वो है बाजार। मुझे तो लगता है कि ये बाजार विमर्श की कविता भी समकालीन कविता कहीं ना कहीं है। और ये कैसे है कि बाजार का जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य का वस्तुकरण जिस तरह से हो रहा है, संबंधों में जिस तरह से यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, वो सब कविता को रूप देता है। समकालीन कविता में उसकी जगह है। जैसे उदाहरण मैं देना चाहूंगा, कुंवर नारायण की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि मोहल्ले में वो शांति बेचता है। अब शांति खरीदने बेचने की चीज नहीं है,
0: जी जी जी
1: लेकिन मोहल्ले में वो शांति बेचता है। लाउड स्पीकरों की एक दुकान है उसकी, बिल्कुल मेरे घर से लगी हुई। सुबह सुबह मुंह अंधेरे 2 घंटे लाउड स्पीकर न बजाने के वो मुझसे 100 रुपए महीना लेता है।
0: क्या
1: आप देखेंगे
0: कहेंगे।
1: सब कुछ बिकाऊ है, लाउड स्पीकर बजाना भी बिकाऊ है और न बजाना भी बिकाऊ है। अब ये जो बाजार का असर इतना जीवन पर पड़ रहा है, इसमें सुविधाएं ही सब कुछ हो गई हैं। बोधिसत्व ने लिखा कि आजादी के लिए रोने से बेहतर है सुविधा भरे तहखाने के लिए रोना। तो आज का मनुष्य चंद सुविधाओं के लिए रो रहा है। और ऐसा नहीं है कि समकालीन कविता में केवल नेगेटिव चीजें हैं, केवल नकारात्मक प्रभाव बाजार के दिखाए गए हैं, बल्कि आप सकारात्मकता भी देखिए। राजेश जोशी के कविता वाक्य कुछ उद्धृत करता हूं मैं, कि जिनमें जो सुख के तथाकथित साधन हैं उनका बौनापन दिखलाई देता है। वो सुख के साधन कितने नाकाफी हो जाते हैं, कितने बौने हो जाते हैं जिंदगी के सामने। उनके कविता वाक्य देखिए, नदियों से बात करना चाहता हूं इस समय, पर टेलीफोन पर यह मुमकिन नहीं। उन दरख्तों का भी मेरे पास कोई नंबर नहीं जो अक्सर रास्तों में मिल जाते हैं। परिंदों के पास कोई मोबाइल होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं। जिनसे बतियाने की इच्छा होती है उनके पास तक ही जाना पड़ता है हर बार।
0: वाह
1: तो जिनसे बतियाने की इच्छा होती है उनके पास तक हर बार जाना पड़ता है, समकालीन कविता ये भी बताती है, वो रास्ते भी दिखाती है कि समकालीन जीवन में एक खुशनुमा मनुष्य जीवन जीने के रास्ते क्या हैं।
2: बेहतरीन सर।
0: बहुत बढ़िया। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है कि भारतेंदु युग जो हम 1900 तक मानते हैं वहां से लेकर आज 2026 में हम हैं, तो लगभग 125 साल का जो हिंदी साहित्य है, जो हमने शुरू में ही बात की, बहुत व्यापक विषय है, लेकिन हमारे सभी अच्छे वक्ताओं ने उसको बहुत संक्षेप में चीज़ों को लेके आए। कविता वाली बात हुई, गद्य की बात हुई, स्त्री विमर्श की बात हुई, तो ये आज का जो विषय रहा ये बहुत ही प्रासंगिक भी है और चर्चित तो है ही। तो मुझे लगता है कि मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करूं। हमारे साथ शिवराज सिंह बेचैन जी रहे हैं, आपका बहुत आभार, और विनय विश्वास जी ने बहुत महत्वपूर्ण अपनी बातें रखी, और डॉक्टर राजवंती जाखड़ जी ने भी अपना विचार स्त्री विमर्श को लेकर दिया। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: भारतेंदु के बाद का हिंदी साहित्य, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, वरिष्ठ लेखक और प्राध्यापक डॉक्टर रवि शर्मा मधुप, वरिष्ठ लेखक और प्राध्यापक डॉक्टर विनय विश्वास, और वरिष्ठ लेखिका एवं सह आचार्य डॉक्टर राजवंती झाखड़। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर रवि शर्मा मधुप। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 10:10 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। जी हाँ, आपकी पसंद के गीत होंगे, आपकी पसंद की बातें होंगी, और उसके लिए आपको करने होंगे हमें संदेश, यानी कि डिजिटल चिट्ठी आपको भेजनी होगी, और वो होगी एक छोटे से मेल के जरिए, और वो है ip.radio.delhi@gmail.com पर। जी हाँ, हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com, जिस पर आप अपना संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, या कहें कि एक डिजिटल चिट्ठी आप हमें भेज सकते हैं, और आपकी पसंद की हम बातें करेंगे। आप बताइएगा कि सुबह आज संडे की कैसी बीती, और इसके साथ ही गीत होंगे आपकी पसंद के। तो और ये सब जो आप सुनेंगे ये होगा आपके आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के जरिए। तो तो बने रहिए आकाशवाणी।

0: दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, और समय हो चुका है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ, 9:15 होने को है और समय है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर सुभद्रा देसाई, और ये पार्ट टू होगा। जानी मानी गायिका और शिक्षाविद हैं ये। भेंट करता व प्रस्तुति होगी काजल सूरी की, लीजिए सुनते हैं।
1: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। आज आप इसकी दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेंगे। तो श्रोताओं, डॉक्टर सुभद्रा देसाई के शख्सियत के और पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे अपनी दूसरी कड़ी में। डॉक्टर देसाई, आपने प्राचीन संस्कृत और पाली ग्रंथों के लिए शास्त्रीय रागों में संगीत रचा है। उनको विषय आधारित प्रस्तुतियों के रूप में भी आपने उनको प्रेजेंट किया है। क्या कहेंगे इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप?
0: संस्कृत में उसको राग में निबद्ध करके गाने का, उसको कंपोज करके गाने का, ये तो मैंने अपने गुरुजी से ही सीखा। तो मैं बचपन से उनको देखती थी कि वो कभी कभी, उनकी बहन जो बहुत जानी मानी ओडिसी नृत्यांगना है माधवी जी, उनके लिए वो बनाते थे संस्कृत के श्लोकों को, वो कंपोज करते थे और जो हम लोगों को सिखाते भी थे तो हम गाते थे। तो और उसके बाद, क्योंकि मैंने संस्कृत मेरा अध्ययन का
1: पढ़ाती
0: विषय
1: भी रही
0: था,
1: हैं आप संस्कृत
0: मैंने
1: को?
0: पढ़ा, मैंने डॉक्टरेट भी किया संस्कृत में, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि क्योंकि वेदों का भी मंत्र जो है वो वैदिक संस्कृत में है, तो वो भी चैंटिंग ही करते हैं,
1: जी
0: उसके भी तीन स्वरों में उसके सस्वर पाठ होते हैं, तो वो मैंने सीखा था विधिवत जब मैं कॉलेज में थी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अपना जो अध्ययन संस्कृत में है और संगीत में है, दोनों को मैं कैसे जोड़ सकूं। तो कोशिश किया, कुछ कुछ उपनिषदों के मंत्रों को लेके कोशिश किया कि इसको स्वरबद्ध करूं, इसको गाने की कोशिश करूं, और फिर उनको गाने का मौका भी मिलने लगा। तो और कुछ फिर मैंने रिकॉर्ड किए, वो सीडी के रूप से भी वो निकला
1: जी
0: अद्वैत नाम से। और उसके बाद ऐसे कुछ कुछ फिर वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इनके इनके जो श्लोक हैं उनको भी मैं कंपोज करके
1: संगीतबद्ध
0: गाने
1: किया
0: लगी,
1: आपने उनको?
0: संगीतबद्ध करके उनको गाने लगी। तो फिर मुंबई के NCPA में मुझे एक अवसर मिला जहाँ पे मुझे 2 घंटे केवल संस्कृत में गाने को
1: वाह
0: मिला।
1: वाह,
0: तो उसमें वेदों से लेके शुरू करके उपनिषदों में से फिर चतुश्लोकी भागवत, फिर शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, जयदेव, गीत गोविंदम से, तो हर चीज़ गाने का मुझे
1: मौका
0: अवसर
1: मिला जी
0: मिला।
1: मुझे।
0: फिर एक मित्र हैं और मेरे छात्र भी कह सकते हैं, उन्होंने संस्कृत में सामवेद पर PhD किया, अभी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो और बहुत अच्छे संस्कृत के कवि हैं,
1: जी
0: तो उनको मैंने बोला कि देखो मुझे ख्यालबद्ध करके गाने का मन है,
1: जी
0: तो कैसा, आपको किस तरह की बंदिश चाहिए? तो उसको भी संगीत में रुचि है, उसने भी सीखा है, तो मैंने उनको कुछ कुमार जी के बंदिशें सुनाई कि उसमें कैसे, उसके उसके जो लिरिक्स हैं उसके परपर्ट कैसे होती है, उसकी उसकी उसके अर्थ क्या होते हैं, किस तरह की भावना उसमें होती है,
1: जी
0: ये सब चीज़ें मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा एक कविता लिख के दिया, उसको मैंने विलंबित ख्याल बना के गाया।
1: हाँ,
0: तो ये सारी
1: क्या
0: चीज़ें मुझे
1: बात,
0: NCPA में पहली बार प्रस्तुत करने
1: करने का
0: का
1: मौका मिला
0: मौका
1: आपको,
0: मिला।
1: बहुत खूबसूरत
0: तो
1: बात।
0: और जो पाली के जो श्लोक हैं वो उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है उसमें। यहाँ टिबेट हाउस में जो डायरेक्टर थे वो रिनपोचे दोबुंग तुलकु, तो उन्होंने कहीं पे ऐसे सुना होगा मैं श्लोक गाने गाती हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो हमारे बौद्ध जो टेक्स्ट हैं उनको तुम क्यों नहीं गाओ। तो मैंने कहा कि मैंने मुझे पता नहीं कैसे गाना चाहिए, तो उन्होंने
1: जी
0: कहा कि यू ट्राई, यू डू एज यू आर डूइंग इट फॉर द विद द संस्कृत टेक्स्ट। तो फिर ऐसे करते करते उन्होंने मुझे टेक्स्ट, नए नए टेक्स्ट निकाल के देते थे, और पाली भाषा मुझे नहीं आती थी, जैसे संस्कृत के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा एक वो संबंध था, पाली तो मुझे आती नहीं थी, तो फिर बिरला मंदिर के पास जो मंदिर है, बौद्ध मंदिर, मैं

0: हाँ गई, और वहाँ पे वहाँ के जो भंते जो साधु थे,
1: जी जी
0: तो उनको मैंने कहा कि मुझे तिब्बत हाउस के रिनपोचे ने ये सब दिया है, तो आप मुझे इसके उच्चारण बताए। एक तो अर्थ तो मैं
1: अच्छा
0: समझ लेती थी, संस्कृत जानने वाला पाली समझ लेता है, बट उस
1: उच्चारण बहुत
0: उच्चारण,
1: जरूरी
0: पाली
1: है।
0: का उच्चारण बहुत अलग है संस्कृत से। तो उन्होंने वो मुझे बैठ बैठ करके वो मुझे उसके अर्थ भी समझा देते थे, उसके उच्चारण सुधार देते थे। तो उसके बाद मैं उनको लयबद्ध, लयबद्ध तो नहीं क्योंकि वो टेक्स्ट्स हैं, खुले टेक्स्ट्स हैं, तो छंद बनते नहीं थे, तो उसको फिर वो राग में थोड़ा आलाप जैसे ही उसको कंपोज करके फिर मैं दलाई लामा जी के सामने गाने का
1: क्या
0: मौका
1: बात,
0: मिला,
1: वाह
0: दो बार
1: वाह,
0: उनका आशीर्वाद भी
1: अपने आप
0: मिला।
1: में बड़ी उपलब्धि है ये भी एक।
0: वो बहुत बड़ी उपलब्धि, मतलब ये तो मैं सोच ही नहीं सकती, सामने उनके वो बैठे हैं, यहाँ मैं सामने बैठ के मैं गा रही
1: क्या
0: हूँ
1: बात,
0: और बाद में
1: वाह
0: उन्होंने
1: क्या
0: मुझे आशीर्वाद किया।
1: बात।
0: तो ये सब देखिए, ये मैं सोचती हूँ कि ये सब जो प्राप्ति है ये ईश्वर की इच्छा से ही होती
1: बिल्कुल
0: है, उसके
1: बिल्कुल
0: बिना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हुआ। हाँ
1: आपने किताबें भी लिखी हैं,
0: जी
1: मैं चाहूंगी उनके बारे में जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ, वैसे तो संगीत के गायक जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो बोल नहीं सकते, हम तो गा ही देते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैं भी बोलने में बहुत खराब थी। एक तो हिंदी, पहले शुरुआत में तो हिंदी इतनी अच्छी बोलती नहीं थी, और फिर जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे एक प्रोफेसर थे, वो सेंट स्टीफेंस में, उन्होंने कॉलेज में उन्होंने संस्कृत और हिंदी विभाग उन्होंने शुरू किया था, तो प्रोफेसर वेदज्ञ आर्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीएचडी, जब डॉक्टर पीएचडी का काम जब मेरा चल रहा था, तो उन्होंने कहा हिंदी में क्यों लिख रही हो, अंग्रेजी में लिखो, ये तुम्हारा विषय है वाल्मीकि रामायण में संगीत, तो इंग्लिश में लिखो ताकि ये दुनिया में लोगों को, लोग ये जान
1: जान
0: सकें और
1: सके,
0: पढ़
1: पढ़
0: सकें।
1: सके भारत से बाहर भी।
0: जी, तो उस समय मैंने अंग्रेजी में लिखना फिर शुरू किया। मैं कोई लेखिका नहीं हूँ, लेकिन रिसर्च करके, रिसर्च का जो फल है वो लेखनी से मैं जाहिर कर सकती हूँ। बट मैं अभी, दो मेरी पुस्तकें हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: एक तो फिर ये जो है ये पुस्तक के आकार में आया 2008
1: आठ
0: में,
1: में
0: और उसके बाद तो मेरी जो भाषा है अंग्रेज़ी भाषा, वो भी मेरे भाई हैं सिद्धार्थ, उन्होंने उस भाषा को सुधारा। तो कैसे लिखना चाहिए ये मैंने उनसे सीखा।
1: जी
0: तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे मिला था, तो वो संत कवयित्रियों के गीत और उनके जीवन के ऊपर था, तो वो भी वो मेरे लिए एक बड़ा जीवन परिवर्तन कर देने वाला एक अनुभव रहा है। क्योंकि बचपन से हम लोग कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब के भजन हमने सीखा, सुना है, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: और मेरे गुरुजी से मैंने सीखा है, उन्होंने, उनके गुरुजी पंडित कुमार गंधर्व जी, वो तो उन्होंने तो शास्त्रीय संगीत में जो डिवोशनल म्यूज़िक है उसका बिल्कुल उन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया
1: बिल्कुल।
0: हमारे शास्त्रीय संगीत में भजन को, जिस तरह से उन्होंने लाए। तो बचपन से उनको सुना है, और अपने गुरु जी, भैया जी से, मधुब जी से मैंने भजन बहुत सीखे हैं और गाए हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मीराबाई के भजन हम गाते हैं, लेकिन मीराबाई जैसी एक ही क्यों है, क्यों
1: और भी
0: केवल मीराबाई
1: हैं।
0: के ही हम गाते हैं, कोई महिला और संत भी तो रही होंगी। तो ऐसे मेरे मन में था, तो वो आकार लिया इस रिसर्च प्रोजेक्ट में, और मुझे 77 ऐसी महिलाएं हमारे देश भर में मिली
1: क्या बात, वाह
0: जो
1: वाह, क्या
0: जिन्होंने अपने गीत गाए हैं
1: बात,
0: और भगवत प्रेम का गीत के गीत
1: क्या
0: गाए
1: बात,
0: हैं।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी जैसे आपने वाल्मीकि की रामायण में संगीत की बात कही, ये जो आपकी किताब है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी है,
0: हाँ।
1: वहाँ की लाइब्रेरी में भी
0: जी,
1: है
0: लोएब लाइब्रेरी में।
1: जी। तो क्या कोई ऐसा कलाकार जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलती हो या मिली हो? कहते हैं ना
0: बिल्कुल
1: कि ये मेरा फेवरेट है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे गायकों को हमने सुना है, लेकिन जो, जैसे मैंने कहा कि पंडित कुमार गंधर्व जी को हमने

0: बचपन से सुना है। वो दिल्ली में आते थे मेरे गुरुजी के यहाँ,
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: गंधर्व महाविद्यालय में वो आते थे, और उनको सुनते हुए बड़ी हुई, और उनके उनकी आवाज़ में जो बात थी उससे मुझे बचपन से एक बहुत खींचाव, बहुत अट्रैक्शन
1: जी
0: लगता था, महसूस होता था। और ऐसा स्वर, मुझे लगता था कि ऐसे स्वर में ऐसी शुद्धता वो शायद मैंने कहीं और नहीं सुना। और वो सुनते सुनते बड़ी हो रही थी और गुरुजी से सीख रही थी। और मेरे गुरुजी के पास मैंने दो तीन चीज़ें, बहुत बड़ी बातें सीखी,
1: जी
0: कि एक तो है पूरा समर्पण भावना,
1: बहुत ज़रूरी है ये,
0: और समर्पण भावना किसमें, स्वर के प्रति समर्पण
1: बिल्कुल
0: भावना,
1: बिल्कुल
0: स्वर के प्रति। वो तानपुरा मिला कि वहाँ और कुछ नहीं होता है, कि तानपुरा और गुरुजी का स्वर और अपना स्वर, तो वो स्वर समझ, अपने आप को समझ में आना, गले में से उसको निकालना, तो ये जो बात है, ये जो संपूर्ण समर्पण से ही संभव हो सकता है, ऐसे
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: मुझे लगता है कि आर्ट की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो थिएटर हो, या कुछ भी हो, ये लेखन
0: हाँ,
1: हो, समर्पण बहुत ज़रूरी
0: बहुत
1: है,
0: ज़रूरी
1: बहुत
0: है
1: ज़रूरी है समर्पण की भावना।
0: ये मैंने बहुत डीपली मैं ये उनसे सीखी हूँ। और एक तो दूसरी डिसिप्लिन,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: ज़रूरी
0: हम
1: है,
0: लोगों के संगीत में ऐसा है कि डिसिप्लिन के बिना काम नहीं
1: नहीं हो
0: चलता है।
1: सकता, नहीं हो सकता।
0: समय नियमानुवर्तिता, समय पे रहना, और रोज़ उसमें समय देना, और डिसिप्लिन के साथ वो केवल सीखना, सिखाना, सिखाना भी, सिखाने के अंदर भी एक डिसिप्लिन की बात बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर जैसे हम संग कार्यक्रम में जाते हैं तो हम इतने जल्दी पहुंच जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइज़र भी कई बार होते नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तो मतलब 1-1.5 घंटा पहले, क्योंकि हमने देखा है ऐसे हमारे गुरुओं को, उनके गुरु को, कि समय पे पहुंच, समय से बहुत पहले पहुंचना, तानपुरा
1: बहुत
0: मिलाना,
1: जरूरी
0: ये
1: चीज
0: सब
1: है ये,
0: चीज़ें।
1: बहुत जरूरी चीज है ये। आज के जो युवा हैं, जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, खास तौर पे शास्त्रीय संगीत के में आना चाहते हैं, वो आप उनको क्या गाइडेंस देंगी, क्या कहेंगे उनको आप? जिस तरह से आपने अभी बात की कि समर्पण बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पे जो युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि ये साधना है, ये बहुत आसान नहीं है, कोई ये सोच के
0: हाँ
1: आएगी बहुत आसान है, ये आसान नहीं है, तो आप क्या कहेंगी?
0: तो एक तो ये है कि आज का जो ज़माना है इसमें हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो जाना, मिल
1: बिल्कुल
0: जाना, ऐसा
1: बिल्कुल
0: एक बात आ गई है सामने, कि सब लोग सोचते हैं, केवल युवा वर्ग ही नहीं, बड़े भी सोचते हैं कि भाई बहुत जल्दी से कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। शास्त्रीय संगीत के जो विद्यार्थी हैं और जो शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं, उनको ये समझ के आना चाहिए कि मैं इसमें से मुझे कुछ मिलना नहीं है, ये समझ के आए तो ही वो सीख पाएंगे। अगर वो सोचें कि मैं 5-6 साल में गायक बन जाऊंगा,
1: ऐसा नहीं हो
0: ऐसा
1: सकता,
0: नहीं हो
1: नहीं हो
0: सकता है।
1: सकता।
0: तो वो तानपुरे के साथ बैठ के अभ्यास करना, गुरु से सीखना, और जितना जो जितना अभ्यास कर सकता है उसके लिए उतना अच्छा है।
1: अभ्यास के साथ साथ बहुत खूबसूरत बात जो आपने बोली, समर्पण और
0: हाँ,
1: पैशन, वो
0: पैशन
1: बहुत जरूरी है।
0: तो वही है कि मैं गायक बन जाऊंगा इसलिए मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पेशेंस और परसिवियरेंस,
1: बिल्कुल
0: पेशेंस से अभ्यास करना है, सुर ठीक लगाना है, और परसिवियरेंस, उसको करते ही रहना है,
1: बहुत
0: और
1: ज़रूरी है,
0: उसके प्रति एक जो निष्ठा, एक प्यार, ये सब
1: डेडिकेशन
0: चीज़ें, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें अपने अंदर उसको पनपने देना
1: और
0: है,
1: ऑनेस्टी, ये
0: ऑनेस्टी।
1: बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर देसाई, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, आपका बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं आकाशवाणी की तरफ से।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू काजल जी।
1: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमारे साथ थीं जानी मानी शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई, भेंटकर्ता और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना जानी मानी गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई से काजल सूरी की बातचीत की दूसरी कड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं,

अरिजीत दर हमीन साले 2004 मिलादी बा महबूबा दूसते बच्चगी ये खुद कोयल राय इस दुआज कर ऊ दर जुमरे आवाज खानी ये किलासी की आमोजिज दीदेस वो हमरा बा तराने हा ये हिंदी जबान दर जमाने बंगाली नीज आवाज खान देस ऊ बेदौर मुरतब दर शो हा ये गुना गुन शिरकत मी गुना ऊ हत्ता बा मौसीगी साजान मारूफ मानंद शंकर एहसान लॉय व प्रीतम व दीगरान हमकारी नमूदे व सहम में शायानी आवाज खुद रा इराय नमूद ऊ तराने हाई मुतादी रा बराये शो हाई मुख्तलिफ टेलीविजनी नीज तरतीब दादे व बराये यक सीरियाल मारूफ बेनामे मधुबाला एक इश्क एक जुनून तराने रा खान।

يا دول.

حاله وألحان حبي أعطيتها هدية وما قابلت بالمثل.

0: أيها السادة، على أن أقدم لكم سبوتلايت.
1: سبوتلايت.

0: बाद में फिर वही ना कि हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, हमारे बच्चों को तो हम सिखा ही नहीं पाए। तो मेरा प्रयास भी हमेशा यही रहता है कि जो हम अपने कोई वार त्यौहार के, भाई सबके देखो मान्यताएं अलग अलग होती हैं, सबके त्यौहार मनाने के ढंग अलग होते हैं। किसी घर में कोई मिठाई बनती है, किसी के घर में अगले दिन भी त्यौहार होता है, तो उसके बाद के हिसाब से हम उन चीज़ों को अगर अपने बच्चों को बताएंगे तो उन बच्चों को उसका पता भी रहता है।
1: जी हाँ, और ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया और दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को स्वयंसेवी और परोपकारी कार्यों के जरिए दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया।
0: यानी दान केवल हमारे भारत में ही नहीं,
1: जी हाँ,
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: दुनिया
0: स्तर
1: भर
0: पर।
1: की परंपरा है।
0: बिल्कुल, तो अब उससे हम यही सीखेंगे कि जो हम दान देने की एक मन में भावना रखते हैं तो वो भावना हम सब में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और जब हम कई बार कहते हैं ना कि अरे ज़िंदगी तूने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया,
1: जी
0: वैसे हमने किताबों में कुछ नहीं सीखा, हमारे फलाने शिक्षक ने सिखाया, उनसे हमने कुछ कुछ सीखा, लेकिन ज़िंदगी तूने तो ऐसे ऐसे इम्तिहान हमसे लिए कि बस एक के बाद एक जो है हम सीखते चले
1: जी
0: गए।
1: हाँ, कमलेश, एक बहुत लाइन सुनी थी मैंने, कहते हैं कि जब वक्त का थप्पड़ पड़ता है तो अच्छे अच्छों को अक्ल आ जाती है और बहुत
0: बिल्कुल
1: दुनियादारी समझ आ जाती है।
0: बिल्कुल, और वो समय भी होता है, और उस समय को हम शिक्षक भी मानते हैं।
1: जी
0: तो हमारे में तो जब शिक्षक की बात होती है, गुरु की बात चलती है, तो सबसे पहला जो गुरु होता है वो, उसको हमने दिया है माँ का दर्जा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: माँ जो होती है वो हमारी पहली गुरु होती है, उसके बाद में हम पिता को लेते हैं, फिर हम लेते हैं गुरु को। तो जब हम गुरु की बात करते हैं तो 5 सितंबर को हमने जो है शिक्षक
1: शिक्षक
0: दिवस भी
1: दिवस
0: मनाया
1: मनाया।
0: है,
1: जी
0: और बच्चे बड़े उत्साह के साथ जो है अपने शिक्षक के लिए लेकर आए सामान की हमने देना है। आप भी तो एक शिक्षिका हो तो आपको भी तो बच्चों ने जो है वो कुछ ना कुछ दिया होगा,
1: जी
0: और कहा
1: हाँ,
0: होगा कि
1: बच्चों का
0: हैप्पी
1: टीचर्स
0: टीचर्स डे।
1: डे, जी हाँ बिल्कुल, बच्चों ने बहुत उत्साह से मनाया। और बच्चों का प्यार ही एक शिक्षक के लिए एक सम्मान, वो बहुत होता है कमलेश। और देखिए ना, जब बच्चा अपने दायरे, परिवार के छोटे से दायरे से निकलकर बाहर जाता है, बाहर की दुनिया देखता है, तो उससे रूबरू कराने का जो एक फ़र्ज़ होता है वो एक अध्यापक का होता है। क्योंकि बच्चे को दुनिया की समझ नहीं है, बच्चे ने क्या देखा है, अपने माता पिता देखे हैं, अपने साथ भाई बहनों को देखा है, लेकिन बाहर की दुनिया तभी देखता है जब वो विद्यालय जाता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता है। तो ऐसे में अध्यापक सिर्फ उसे किताबी ज्ञान ही नहीं देता कमलेश, उसे
0: व्यवहारिक
1: आस
0: ज्ञान
1: पार का
0: भी,
1: व्यावहारिक ज्ञान भी बिल्कुल देता है, उनकी परेशानियों को समझता है और उन्हें सुलह करने की कोशिश करता है।
0: और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो है माँ बाप से अपनी बातें शेयर नहीं करते, लेकिन जो अपना उसका शिक्षक है उससे वो बातें घर की या जो वो परेशान है तो उसकी बातें शेयर करके आ जाते हैं। और ये बातें हमें कब पता चलती हैं? ये तब पता चलती है जब पीटीएम होती है। यानी
1: जी
0: जो मैं
1: हाँ
0: ये कहती हूँ कि कुछ बहनें हमारी कहती हैं अरे आज तो शनिवार का दिन हमारा खराब हो गया, पीटीएम मीटिंग में जाना पड़ेगा, और मैं कहती हूँ बहनों को कि बहनों आपको मिलने का मौका मिलता है टीचर
1: जी
0: से,
1: हाँ
0: और बच्चा
1: बिल्कुल
0: भी आपका साथ होता है, आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे के बारे में, और जो आपका बच्चा जिस टीचर से पढ़ता है उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, भावनात्मक जो व्यथा है, वो एक टीचर बहुत अच्छे से समझता है और जवाब भी देता है।
0: तभी तो हम गुरु को नमन करते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ।

0: और अब हम
1: ये युग है कमलेश बेटियों का, है ना।
0: बिल्कुल
1: बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में हमारी सरकार जो है बहुत सी योजनाएं चलाती है, और ऐसी एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या है कि बेटियों के लिए एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है।
0: और मैं जो बात कह रही थी वो यही कह रही थी कि जब लड़कियां पहले आती थी हमारे घरों में, कोई बोलता था कि हमारे घर में बिटिया है, तो बिल्कुल धीमी सी आवाज में बोलते थे, पता नहीं क्या हो गया है कि भाई पता नहीं।
1: जी,
0: लेकिन अब जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई हमारे घर में लक्ष्मी
1: लक्ष्मी
0: आई
1: आई
0: है। तो
1: है।
0: देखो जो ये चेंज है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी ये कहूँगी कि जो जिस योजना की हम बहनों से बातें करते हैं बताते हैं, तो उस योजना का लाभ हमारी बहनें भी ले रही होंगी। तो हम तो यही कहते हैं कि हर बेटी का भविष्य उज्जवल हो और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे।
1: बिल्कुल।

0: और मनीषा, जब हम बात करते हैं अपनी बहनों के बारे में या अपनी बहनों के साथ बातें साझा करते हैं, तो
1: जी
0: उसी में वीरांगना क्रम एक रखा हुआ है, तो उसमें आज हम बात कर रहे हैं पार्वती गिरी के बारे में।
1: जी हाँ।
0: ये उड़ीसा की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, समाज सेविका रही हैं, और इन्हें उड़ीसा में मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही देश प्रेम इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय इन्होंने भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना जो जीवन है वो गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंद जो लोग थे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था।
1: जी हाँ। और कमलेश, जब बात करते हैं हम ऐसी महिलाओं की, तो ऐसी ही महिलाएं हमारी देश के लिए, अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। और ख़ास तौर पे जब बात आती है ग्रामीण महिलाओं की, तो उनके नेतृत्व कौशल का विकास करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी योजनाएँ चलती हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण कुंजी है वो है आर्थिक स्वावलंबन। निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित हो, डिजिटल और तकनीकी साक्षरता से वो रूबरू हों, और साथ ही साथ उनमें प्रेरणा और संवाद कला भी विकसित हो। यानी कि महिलाओं को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखनी आनी चाहिए, समस्याओं का समाधान वो खुद ढूंढ सकें। यानी कि किसी भी स्तर पर हों, किसी भी पक्ष पे हों, लेकिन वो अपनी बात को अच्छे से, अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा पाएँ, अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हों।
0: और अपना कई बार मैं यही सोचती हूँ कि बहनों में ये सब खूबियाँ तो होती हैं, लेकिन वो अपनी खूबियों को पहचान नहीं पाते। तो हम तो यही कहेंगे कि वो अपनी खूबियों को पहचानें और अपने अंदर आत्मविश्वास रखें।
1: जी हाँ, तभी तो छोटी छोटी आशाओं को पंख मिलेंगे।

कार्यक्रम का पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001।

0: और आज का हमारा सफ़र यहीं तक मनीषा। उसके बाद अगले प्रोग्राम में हम फिर अपनी बहनों के लिए नई नई जानकारी लेकर आएंगे, जिनको
1: बिल्कुल,
0: सुनकर उनको अच्छा भी लगेगा।
1: सभी सुनने वाली बहनों को
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर, अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के

0: काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉर्डेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदाज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Lalema Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce (SRCC) at the Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said, India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said, the world is watching India become the fastest growing major economy. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October the 8th, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November the 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued late last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. Well, more than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपका फेवरेट प्रोग्राम एक ही फिल्म से हम लेकर आएंगे इस संदेश के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हेलो, सलाम, नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी हस्ती मुस्कुराती दीप्ति।

0: दोस्तों कभी कभी ना कोई फिल्म सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आती, वो अपने साथ एक मौसम लेकर आती है। एक ऐसा मौसम जिसमें मिट्टी की खुशबू भी होती है और प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की पहली पहली आहट भी, और साथ होती है दूर कहीं बजती हुई बांसुरी। आज का सफर है 1979 की उस फिल्म का जिसने बिना बड़े सितारों की चमक के सिर्फ अपनी सादगी, संगीत और मासूम प्रेम से दर्शकों के दिल में जगह बना ली। सावन को आने दो। राशि की इस फिल्म का निर्देशन कनक मिश्रा ने किया था और निर्माण तारा चंद बड़जात्या का था। कहानी के केंद्र में है हमारा हीरो बिरजू, एक साधारण से गांव का लड़का जिसकी आवाज में हुनर है और दिल में बहुत सारी मोहब्बत। उसके सामने है चंद्रिका, जमींदार की बेटी। मोहब्बत मौजूद है लेकिन दोनों के बीच में है हैसियत की दीवार। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात, इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है बिरजू के पास दौलत नहीं लेकिन उसके पास सुर है, संगीत है, लय है, ताल है। तो आइए यादों की पोटली खोलते हैं और सुनते हैं उस आवाज को जिसे के जे येसुदास ने अपनी खास मिठास दी।
1: तिथियन का चंद्रमा।
0: बिरजू का किरदार पर्दे पर उतारा अरुण गोविल साहब ने और चंद्रिका बने हमारी जरीना बहाओ।

दोस्तों, सावन को आने दो की खासियत सिर्फ इसकी प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि इसकी खासियत एक कास्टिंग भी थी। अरुण गोविल ने बिरजू के रूप में एक ऐसे नौजवान को निभाया जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका हुनर है। कुछ साल बाद यही चेहरा टेलीविजन पर भगवान राम के रूप में घर घर पहचाना जाने लगा था, एंड आई एम श्योर कि आपको याद जरूर आ गया होगा। जरीना वहाओ ने चंद्रिका के किरदार में उस दौर की सादगी और सहजता को सामने रखा। रीता भादुड़ी भी फिल्म के किरदार में उस दौर की काफ़ी अहम हिस्सा रहीं, जबकि मुकरी, लीला मिश्रा और यूनुस परवेज जैसे अनुभवी कलाकारों ने सपोर्टिंग कास्ट को और मजबूत किया। और अमरीश पुरी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। अमरीश पुरी तब तक उस विशाल पहचान का हिस्सा नहीं बने थे जिसके लिए बाद की पीढ़ियां उन्हें जानती हैं। यानी इस फिल्म को आज देखने पर एक दिलचस्प चीज़ दिखाई देगी, कई जाने पहचाने चेहरों का करियर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा था। फिल्म में बिरजू का सफ़र गांव से शहर और फिर सफलता की तरफ जाता है, और इसी सफ़र के साथ उसके संगीत को भी नया विस्तार मिलता है।

दोस्तों, राशि की फिल्मों में रिश्तों, परिवार और सरल मानवीय भावनाओं को केंद्र में रखने की वो परंपरा थी जिसका रंग इस फिल्म में भी बखूबी दिखाई देता है, और शायद इसीलिए फिल्म की दुनिया बहुत चमकदार होकर भी बनावटी नहीं लगती। यहाँ प्रेम किसी महंगे सेट पर नहीं पनपता, यहाँ भावनाएं सीधे लोगों के बीच से निकलती हैं। आज इस दौर में जब किसी एल्बम का एक या दो गाना भी लोकप्रिय हो जाए तो हम इसे हिट एल्बम का नाम दे देते हैं, लेकिन इस फिल्म में यानी सावन को आने दो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गीत ऐसे हैं जो आपने कभी ना कभी जिंदगी में सुने भी होंगे, गुनगुनाए भी होंगे, और अगर आप उन्हें हिट कहें तो हिट कह लें, लेकिन हाँ, उन सभी फिल्म के गीतों की एक अलग अपनी पहचान ज़रूर है।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म एक ही फिल्म से आप इंजॉय कर रहे हैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी सखी, आपकी मितवा दीप्ति के संग। और फिल्म है सावन को आने दो। अब जरा इस फिल्म की गीतकारों की सूची सुनिए। इंदिवर, गौहर कानपुरी, माया गोविंद, मदन भारती, पुरुषोत्तम पंकज फोक जामी, अभिलाष और पूरन कुमार होश, मतलब अलग अलग गीतकारों ने इस एल्बम को अलग अलग अपने शब्द दिए। एक ही फिल्म में शब्दों की कई सारी अलग अलग दुनिया मौजूद थी। कहीं इंदिवर की रोमांटिक कल्पना, कहीं माया गोविंद का लोक स्पर्श, कहीं फोक जामी का दर्द, और कहीं मदन भारती का दार्शनिक अंदाज। और यही कारण है कि इस फिल्म का संगीत एक ही भाव पर कहीं टिकता ही नहीं है। एक गीत आपको मुस्कुराता है और दूसरा कहीं भीतर तक छू जाता है, तीसरा प्रेम की तस्वीर बनाता है, तो वहीं कोई गीत जिंदगी का अर्थ पूछ बैठता है। ये जो अगला गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, ये इसी का शानदार एग्जाम्पल है। ये गीत सुख और दुख के रिश्ते पर एक विचार रखता है कि जीवन में दुख के भीतर भी सुख की कोई परत छिपी हो सकती है। गीत के बोल मदन भारती के थे और आवाज थी जसपाल सिंह की। यानी ये फिल्म सिर्फ ये नहीं कह रही कि प्रेम करो, वो ये भी पूछ रही है कि प्रेम और जीवन की मुश्किलों को साथ लेकर चलना सीखोगे कैसे? सीख सकोगे? सीख ही लोगे।

एक और बात है जो इस फिल्म के संगीत को बाकी फिल्मों से अलग खड़ा करती है, वो ये कि यहाँ हर गीत ना कहानी का एक अगला पन्ना, एक नया चैप्टर ओपन कर देता है। कहीं बिरजू अपनी बात को शुरू में कहता है तो कहीं उसके आसपास का माहौल ही गीत बन जाता है। राजकमल की धुनों में लोक संगीत की सादगी भी है और शास्त्रीय रंग की झलक भी। अच्छा, इस फिल्म की ना एक और दिलचस्प बात है, वो है इसका वोकल एंसेम्बल। यशुदास के साथ जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा, सुलक्षणा पंडित और आनंद कुमार सी जैसी आवाजें भी एल्बम का हिस्सा बनी। यानी एक ही फिल्म में आपको गायकी के बहुत सारे अलग अलग अंदाज सुनाई दिए और यही वैरायटी इस एल्बम को लगातार सुनने के लायक बनाती है। यानी हर अगला गीत पिछले वाले से अलग रंग लेकर, अलग खुशबू लेकर के आता है। चलिए, इससे पहले कि हमारे कार्यक्रम बढ़े अपनी अंतिम पड़ाव की ओर, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज की प्लेलिस्ट में यानी आज की एक ही फिल्म से में आपने सुना 1979 का एक ऐसा चैप्टर जिसमें बड़े बड़े दिखावे की जगह कहानी और संगीत को आगे रखा गया था। और इसी के साथ ही फिल्म का संगीत हमें ये भी बताता है कि अच्छी धुन को ना किसी तारीख की ज़रूरत नहीं होती। वक्त आगे बढ़ता रहता है, फिल्में बदलती रहती हैं, गायकी के अंदाज भी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ धुनें अपनी जगह छोड़कर कभी नहीं जाती।

चलते चलते आपको एक ख़ास बात बता दें कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ये गीत 1980 की बिनाका गीतमाला में लंबे समय तक 20वें 21वें स्थान पर बना रहा था।

और अब आगे जाते जाते कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आपको एक और आखिरी गीत सुनवाना जरूरी है। दोस्तों, बांसुरी को भारतीय संगीत में हमेशा से एक खास प्रतीक माना गया है। बिना कुछ कहे, बिना बहुत कुछ कह देने वाली इस गीत में भी बांसुरी का जिक्र प्रेम की उस भाषा को सामने ला रहा है जिसके लिए लंबे संवादों की ज़रूरत नहीं बनती।

0: और इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की मैं दीप्ति पाठक निधीश आपसे इजाजत चाहूंगी।
1: बोले तो बांसुरी कहीं।
0: दो बजकर 30 मिनट पर आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी है

0: ਦਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: दुनिया भारत को फजाइल फाइल बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के बड़े सपने देखकर प्रलेखा वित्तीय कानून कंसल्टिंग जुड़ी अजिंह संस्थाव बनाने की अपील की जो दुनिया की अगुवाई करने के समर्थ हो। भारतीय मूल के बहुत सारे लोग दुनिया की चोटीलिया कंपनियों की अगुवाई कर रहे हैं, भारतीयों वालों स्थापित कंपनियां भी दुनिया की अगुवाई कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म।

0: ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: वो कहते भारतीय नीतिगत मामले में जो

प्रदेश हाईकोर्ट पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। पटियाला की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी के दोष में मौत की सजा सुनाई है। सारे दोषियों को फांसी देने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने माना कि दोषी एक अपराधी गिरोह चला रहे थे जो नशीले पदार्थ बनाने के बिक्री में कच्चा माल बरामद करता था। दोषियों को गैर कानूनी हथियार भी पाए गए। सारा पीपा ने अपने खिलाफ सारे दोषियों को इनकार किया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में अज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला चीन के शी जीटिंग ते रेन जियांग यू नाल होगा। यह मैच दोपहर बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से शुरू होगा। पहला टेस्ट सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टैंग वी क्यूंग ने 21-15 18 21 11 नाल हरा के पहली बार चाइना मास्टर्स के फाइनल च पहुंची सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की नीति गतिशीलता से सब तो तेजी से बढ़ रही

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की इक्तसादी कुव्वत और वलवला अंगेज पॉलिसी की बदौलत मुल्क विकसित भारत की समत गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो दुनिया की क़यादत के लिए आगे आएं। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इख्तदारे आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबा नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईरान ने आबनाए हुरमुज में 3 अमरीकी टैंकरों और बहरी जहाजों पर हमला किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। मौसमियात महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों पर जोर दिया है कि वो बड़े ख्वाब देखें और आगे आकर कमान संभालें। जनाब मोदी ने कहा कि अगर भारत के बासलाहियत अफराद दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की क़यादत कर सकते हैं तो फिर भारतीय इदारे भी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से SRCC की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। 21वीं सदी के नौजवानों के उमंगों से भरपूर जज्बे की हौसला अफजाई करते हुए वज़ीर आज़म ने यूनिकॉर्न्स बनाने, ड्रोन तकनीक में इख्तरा और जदीद तर्ज के AI हल निकालने में नौजवानों के अहम रोल को सराहा। जनाब मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो साबिका नस्लों से भी कहीं ज़्यादा बड़े ख्वाबों की तकमील के लिए काम करें। उन्होंने उनसे ऐसी आलमी मुशावरती, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी उमूर की फर्म से बनाने के लिए कहा जो दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत रखती हों।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: वज़ीर आज़म ने इस बात को भी उजागर किया कि दुनिया अब भारत की वलवला अंगेज और मुतहर्रिक पॉलिसी नीज

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया

0: के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस

0: की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पन बिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी हैं। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
5: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का

0: वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व तो आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हम हाजिर होंगे इस संदेश के बाद।
3: हे गर्ल्स, आज तो पार्टी चाहिए।
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हेलो, सलाम, नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका आपके मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम एक ही कलाकार में। और दोस्तों, आज जिस नायाब शख्सियत की हम बात करने वाले हैं, उनका जन्म तो हुआ था एक गैराज में। बाद में वो एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी बने और फिल्मी दुनिया में काम भी बहुत सारा किया। लेकिन आपको पता है, उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम की शुरुआत मात्र 200 रुपए महीने के मेहनताने पर शुरू की थी। श्रोताओं, सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एक पहचान में बांध पाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे किसी ने शुरुआती तौर पर अभिनेता के तौर पर काम किया, किसी ने कैमरे के पीछे जाकर अपनी जगह बनाई और किसी ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक पूरी दुनिया, एक पूरी सल्तनत तैयार कर दी। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं, उनकी कहानी में संघर्ष भी है, असफलताएं भी हैं, जोखिम उठाने का साहस भी है और सफलता के ऐसे अध्याय भी हैं जिनके आगे बड़े बड़े आंकड़े छोटे पड़ जाते हैं। एक ऐसे परिवार से आने वाले इस शख्स ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खोया। सामने कोई तैयार कारोबार तो था नहीं, कोई सुरक्षित रास्ता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने लेखक के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने कैमरे के पीछे जाकर अपनी पहचान बनाई और फिर आखिर में वो एक ऐसी शख्सियत बने, एक ऐसा नाम कि देखिए ना, आज हम बात करेंगे पूरे आधे घंटे तक उन्हीं के बारे में। हम गिनेंगे उनकी सफलताओं के मकाम को। हालांकि ऐसी शख्सियतों को आधे घंटे के प्रोग्राम में

समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे ही। तो चलिए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियत से जिनको आप और हम राकेश रोशन के नाम से जानते हैं। मिलवाते हैं आपको इस गीत के ज़रिए पहले, और फिर करेंगे इनके बारे में बहुत सारी बातें।

देखिए ना, उनके सामने कोई बहुत बड़ा कोई कारोबार नहीं था, कोई बहुत सुरक्षित रास्ता नहीं था। ये उन्हें खुद तय करना था कि कैमरे के सामने जाना है या कैमरे के पीछे। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने दोनों रास्ते आजमाए। अभिनेता बने, निर्माता बने, निर्देशक बने और लेखक के तौर पर भी कुछ काम किया। और फिर बनाई ऐसी फिल्में जिन्होंने हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय धारा को एक नया रंग दे दिया। और दोस्तों, इस पूरी कहानी के पीछे ना, इस पूरी कहानी के बीच में एक्चुअली एक बात लगातार कायम रही, और वो बात थी काम करते रहना, लगातार काम करते रहना। आज की हमारी पूरी कहानी इसी जिद, इसी अनुशासन और इसी सिनेमाई सोच से जुड़ी हुई है। 6 सितंबर 1949 को बंबई में जन्मे राकेश रोशन का असली नाम था राकेश नागरथ। बाद में उन्होंने अपने पिता के नाम को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया और राकेश नागरथ हो गए राकेश रोशन। जी हाँ, उनके पिता थे मशहूर संगीतकार रोशन लाल नागरथ, जिन्हें हम

संगीत की दुनिया में सिर्फ रोशन साहब के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली बचपन से ही राकेश रोशन का घर फिल्मों और संगीत से अनजान तो नहीं था। उनके पिता के पास बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में राकेश साहब ने बताया भी कि अपने घर में जब वो बचपन में बड़े बड़े सितारों को आते जाते थे, उनकी गाड़ियों को देखते थे, तो बड़े आकर्षित होते थे। वो शम्मी कपूर के बहुत बड़े प्रशंसक थे और अक्सर उनकी शैली की नकल भी किया करते थे। इनकी थोड़ी स्कूली ज़िंदगी थी ना, वो थोड़ा सा अलग रही। फिल्में देखने का जुनून इतना ज़्यादा था कि पढ़ाई से ज़्यादा आकर्षण सिनेमा घर का रहता था, और इसी वजह से उन्हें महाराष्ट्र के एक सैनिक स्कूल में भेज दिया गया। एक इंटरव्यू के हिसाब से अगर समझा जाए, जो कि उन्होंने दिया था, तो उस हिसाब से स्कूल के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने साथियों को स्कूल से करीब 15 फुट ऊंची दीवार पार करके कई किलोमीटर दूर फिल्म देखने जाने का तरीका सिखा दिया था। लेकिन बाद में यही सैनिक स्कूल उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बना। उन्हें अनुशासन मिला और आगे जाकर यही अनुशासन उनके काम करने के तरीके में साफ दिखाई देता है।

और मोहन कुमार जैसे फिल्मकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने कैमरे के पीछे की दुनिया को बहुत करीब से समझा। यानी अभिनेता बनने से पहले ही उन्होंने फिल्म बनाना सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन सपना अभी भी वही था, हीरो बनना। 1970 की फिल्म घर घर की कहानी से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की और उसके बाद कई फिल्मों में काम किया, जैसे पराया धन, सीमा, आंखों आंखों में, खेल खेल में, खट्टा मीठा, खूबसूरत, कामचोर, मतलब ऐसी कई सारी फिल्मों में वो दिखाई दिए। लेकिन एक समस्या थी। अब समस्या ये थी कि वो काम तो लगातार कर रहे थे, लेकिन बतौर मुख्य अभिनेता वो ऊंचाई हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। बाद के वर्षों में उन्होंने खुद माना कि उनके सामने कठिन सच्चाई थी। अभिनय के क्षेत्र में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और कई बार काम पाने के लिए खुद निर्माताओं से संपर्क भी किया, लेकिन यही दौर आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना, जब अभिनेता के रूप में रास्ता अपेक्षा के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा था तो राकेश साहब ने हार मानकर फिल्म उद्योग से दूरी नहीं बनाई, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। 1980 में दी आपके दीवाने के साथ उन्होंने निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और इसके बाद कामचोर और भगवान दादा जैसी फिल्मों के निर्माण में भी उनका जुड़ाव रहा। अच्छा, यहाँ पे बिना एक बात गौर करने वाली है, करेंगे उस बारे में भी बात, लेकिन पहले इस गीत से मुलाकात।

आपसे आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी दीप्ति। दोस्तों, इस गीत से पहले हम लोग बात कर रहे थे राकेश साहब के बारे में, गौर फरमाने वाली। तो अभिनेता के तौर पर ऑफ कोर्स उनकी सफलता थोड़ी सीमित रही, लेकिन निर्माता के रूप में उन्होंने कहानी, संगीत, सितारों और दर्शकों की पसंद को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया था। और शायद यही वो दौर था जिसने भविष्य के निर्देशक राकेश रोशन साहब को तैयार किया। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बताया भी है कि अभिनेता के रूप में मिली असफलताओं ने ही निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन को जन्म दिया, यानी जिस मोड़ को कोई भी दूसरा व्यक्ति करियर का अंत मान सकता था, उन्होंने उसी को अगली शुरुआत बना दिया।

जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार, और आज एक ही कलाकार में राकेश रोशन साहब की जिंदगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपके

साल आया 1987, फिल्म थी खुद गर्ल्स। राकेश रोशन ने निर्देशक की कमान संभाली और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पर्सनल जोखिम उठाया। फिल्म के प्रीमियर तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी सारी आर्थिक सुरक्षा को दांव पे लगा दिया था। इवन उन्होंने अपनी गाड़ी तक गिरवी रख दी थी। लेकिन खुद गर्ल्स सफल हुई और यहीं से राकेश रोशन के निर्देशन वाले करियर की असली शुरुआत हुई। इसके बाद आई खून भरी मांग, किशन कन्हैया, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला और फिर आया साल 2000। फिल्म आई कहो ना प्यार है और ये आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा लॉन्च था जिसने ऋतिक रोशन को रातों रात देश का सबसे युवा चर्चित सितारा बना दिया। फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे राकेश रोशन, संगीत दिया था उनके छोटे भाई राजेश रोशन ने, यानी पर्दे के सामने बेटा, निर्देशन में पिता और संगीत में चाचा, एक ही परिवार की तीन प्रतिभाएं एक ही फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने थी। खैर, अभी जो मैं आपको गीत सुनवाने वाली हूँ वो कहो ना प्यार है का नहीं है, वो फिल्म है खुद राकेश रोशन साहब पर फिल्माया हुआ।

और चलिए अब बताती हूँ आपको एक मजेदार बात। उनकी निर्देशित हर फिल्म में के नाम का होना एक खास पहचान बना गया। खुदगर्ज से लेकर क्रिश तक, कहो ना प्यार है से लेकर कोई मिल गया तक, हर फिल्म में के नाम से शुरुआत। वैसे कहो ना प्यार है के लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर, जबकि कोई मिल गया के लिए बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान भी मिला। कोई मिल गया में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिलवाया और क्रिश के लिए IIFA ने क्रिएटिव पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया। और आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ, उनको परिवार में प्यार से गुड्डू कहा जाता है और उनके बेटे ऋतिक रोशन को परिवार में प्यार से डुगू बोला जाता है। अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आपके भेजे हुए कुछ मेल। तो हमें भेज रहे हैं ये मेल चूड़ी लाइन मुंगेली से, हमें सुन रहे हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी भी हमें सुन रही हैं शांति नगर से, मस्कीन दादा का भी मेल हमें प्राप्त हुआ है और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र चीपा जी भी हमें सुन रहे हैं, प्रकाश वर्मा, तुलसी मस्कीन, पागुराम यादव, राजकुमार डूडी, अमर राके, रमेश कुमार क्षमा कीजिएगा भी हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, आर कुमार, गुरमीत सिंह, बाबू शिवा, ताज मोहम्मद, नितेश देवांगन, निसार अली, लालगिरी, मोहम्मद कमर, निसार अली, प्रकाश वर्मा, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर, आपको सुनवाते हैं उनका ही यानी राकेश रोशन साहब का ये सुपरहिट गाना।

इसी गीत के साथ आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार से मैं यानी दीप्ति पाठक निधीश आपसे इजाजत चाहूंगी। फिर मिलूंगी आपसे यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बजने को हैं, आइए सुने कार्यक्रम ब्रिज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी।
1: जी चंपा जी,
0: नंद घर जन्मे लाल कन्हाई, गोकुल में बजत बधाई। देखो कन्हैया को जन्म तो ब्रज धरा में हो चुको है और अब दौड़ चल रो है नंदोत्सवन को, छठी मनोरथन को। तो देखो कल जन्माष्टमी नंदगांव में मनी है, तो आज नंदगांव में ना विश्व विख्यात नंदोत्सव हो रहे हो है।
1: चंपा जी देखो, अब छठी तक पूरे भारत में नंदोत्सव रोज ही मनायो जाएगो।
0: हाँ,
1: और आप तनिक देखो तो सही, इकट्ठी है के ब्रज नार, ब्रज गोपी और जो भक्तन की टोली है वो घर घर में इकट्ठे है के बधाई गायन कर रहे हैं।
0: नृत्य गोपाल जी, लोक की बात आपने करी है, आप देखो नंदगांव में जो नंद बाबा को मंदिर है वहाँ को जो नंदोत्सव है, बाकी ना आभा आज देखते ही बन रही है, क्योंकि ऐसा पौराणिक उल्लेख मिले है कि स्वयं भगवान शिव कृष्ण के जन्मोत्सव पे लाला के दर्शन करवे को ब्रज धरा में पहली बार पधारे है। तो वही परंपरा को ना निर्वाह करते हुए आज शंकर लीला को जो आयोजन है वो नंद भवन में या वक्त हो रहे हो है, बांस बधाई हो रही है। बांस बधाई यानी कि द्वापर काल ते जब ते हजारों वर्ष पूर्व कन्हैया को जन्म भयो, तो वह जन्म ते लेके आज तक की जो वंशावली है बाको जो गायन है वो बांस बधाई के माध्यम ते हो रहे हो है। तो देखो कितनी विलक्षण परंपरा है नंदगांव के नंदोत्सव की।
1: जी हाँ चंपा जी, शंकर लीला को जो आयोजन है नंदगांव में, वह आयोजन को देखवे के ताई आस पास के गांवन ते इतने श्रद्धालु वहां पे आमे हैं और उन सबको मानवो ये है कि कन्हैया के दर्शन करवे के ताई जो भोले बाबा आए हैं, जो आज हु नंद भवन में वहां पर नंदीश्वर के रूप में विराजित हैं। और आपको एक बात और बता मैं
0: बताओ
1: कि जो नंदीश्वर विराजित

0: न नंदगांव में मंदिर के बगल में ऐसो मानो जाए कि कन्हैया के दर्शन कर भी आए, और यशोदा मैया ने मना कर दी कि मैं ना कराऊं दर्शन दे, तू तो बाबा बभूत लग रही है, तेरे तो सांप लटक रहे हैं,
1: जोगी
0: बिच्छू
1: का
0: हैं।
1: रूप है मेरा लाला,
0: हाँ
1: डर जाएगो।
0: डर जाएगो।
1: और नृत्य गोपाल जी, आज नंद बाबा मंदिर में जो डमरू बजे है भोलेनाथ भाई बजाएंगे, तो वो डमरू ना केवल एक ही दिन बजेगा मंदिर में, और आज शंकर लीला के दौरान स्वयं शिव बाबा डमरू को वादन कर रहे हैं।
0: पर तनिक ये तो सोचो ना, डमरू बाद में आए के बजाय में पहले तो भोले बाबा आशीश्वर पे जाके बैठ जाएं।
1: नृत्य गोपाल जी वो तो ये है ही है, क्योंकि उन्हें कृष्ण के दर्शन करने हैं, उनके मन में भी यही अभिलाषा है कि कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ ने पायो पार, तो वो भी यही अभिलाषा में आए हैं।
0: और चंपा देखो आप, ये जो ब्रिज के लोग हैं ना, जो ब्रिजवासी हैं, उनको बधाई गायन और उनको भाव कछु बिल्कुल विलग होए।
1: तो बताओ ना।
0: आप देखो ना, एक वाणी में वाणीकार ने लिखो है, हो एक नई बात सुन आई, महर जसोदा ढोटा जायो, घर घर होत बधाई, द्वारे भीर गोप गोपिन की, महिमा वरन न जाई, अति आनंद होत गोकुल में, रतन भूमि अब छाई, नाचत वृद्ध तरुण और बालक, गोरस कीच मचाई, सूरदास स्वामी सुख सागर, सुंदर श्याम कन्हाई।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव को समर्पित ये मन भावन बधाई गीत मंगल गान सुन रहे हते। तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो कन्हैया को जन्म हो गयो है, नंदोत्सव को जो उत्सव है या के जो आयोजन है ना, वे हर घर में हर अंचल में हो रहे हैं। और ब्रज की लोक संस्कृति को तो कहनो ही का, कितने ही लड्डू पेड़ा मेवा मिठाई फल गेंद बल्ला बंसी सब लुट रहे हैं, खूब नेग न्योछावरन की वर्षा है रही है। हम तो आपते कह में कि ऐसे में आप यहाँ रह के का करोगे, आपको भी ब्रज में उचलनो चाहिए।
1: जी हाँ श्रोताओ, सोच तो मैं हूँ ये रहे हो कि चंपा जी को यहाँ झूला रखो है या कुछ लेके मैं हूँ चलो जाऊँ
0: अरे
1: वानंद
0: नृत्य
1: भवन में।
0: गोपाल जी, आप तो अपने गोजा में भर लई हो नेग न्योछावरन ने, हम तो अपने झोलाए भर के लांगे, और वो तो हमारे झोला को जो नेग न्योछावर है वो हमारे काज ही रहेगी। हाँ रही एक आधवार कोई मोर पैंच मिल जाए, कोई बंसुरी बल्ला मिल जाए, भाई हम आपको दे देंगे।
1: ना वो तो बस आप पीड़ा के बाय डब्बा दे दीजिए, बाकी के आप ले
0: हाँ नृत्य
1: लीजो।
0: गोपाल जी, बिल्कुल आपकी बात है, हम जरूर मानेंगे। तो देखो अब यही जब ये नंदोत्सवन को दौर चल रहे हो है, मंगल गान और मंगल उत्सवन के आयोजन ब्रज में हो रहे हैं, तो यही क्रम में अपने भैया बहनान को कछु और सुनवाए दें।
1: जी हाँ चंपा जी,
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता, जाको विषय है नंद के आनंद भय, आलेख है नीतीश कुमार को और वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: आप सब श्रोतान को नीतीश कुमार की राधे राधे। नंदघर जन्मे लाल कन्हाई, गोकुल में बजत बधाई। श्रोताओ, नंद गोप के घर लाला को जन्म भयो, वाही जन्मोत्सव के आनंद अतिरेक उल्लास उमंग उत्साह को ही महामहोत्सव है नंदोत्सव। चारों ओर एक ही उद्घोष, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जन्मोत्सव की ये बेला ऐसी है कि आज काहू की झोरी न्योछावर वरनते भर गई है और कोई कछु लुटाए रहे हो है। हम सबके आराध्य श्री कृष्ण ब्रजराज है के हूँ, ग्वाला हैं, ग्वारिया हैं। हजारों वर्ष पहले द्वापर में जन्मे कन्हैया को जन्म भादो मास के कारी अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मामा कंस के कारागार में भयो। बालक कृष्ण के जीवन पे संकट हो, यही लिए बालक की प्राण रक्षा के काजें वसुदेव जी ने कृष्ण को सूप में रख के यमुना के रास्ते रात में ही अपने घनिष्ठ मित्र नंद गोप के यहाँ गोकुल में छोड़ दियो। सुबह होते ही प्रातः भोर बेला में यह बात को हल्ला मच गयो, जसोदा मैया ने लाला जायो है, बधाई है, बधाई है। सबरे ब्रिजवासी नाच उठे, सब एक दूसरे को बधाई देवे लगे। या अवसर को बड़ो सुंदर वर्णन करते भये ब्रजभाषा शिरोमणि महाकवि सूरदास कहे हैं, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो जिन ऐसो सुत जायो, जाकी दरस परस सुख उपजत कुल को तिमिर नसायो। विप्र सुजन चारण बंदी जन सवे नंद गृह आए, नौतन सुभग हरद दूब दधि

निश्चित शीश बंधाए। गर्ग निरूप किए शुभ लक्षण, अविगत है अविनाशी, सूरदास प्रभु को यश सुनके आनंदी ब्रजवासी। पुष्टि मार्ग में नंदोत्सव जन्माष्टमी ते एक दिना पहले मनायो जाए है। वहीं नंदगाम स्थित नंद बाबा मंदिर में जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव मने है। कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन छठी मनोरथ को आयोजन हुए नंदोत्सव के रूप में मनायो जाए है। जहाँ देखो वहीं लड्डू पेड़ा खेल खिलौना फल मेवा मिठाई रुपया पैसा नंदोत्सव में लुटाए जा रहे हैं। बंसी झुंझुना या कि लूट मची वही है, लूट में वारेन की धूम मची है और धूम मचे हु क्यों ना। नंद बाबा ने लाला को जन्म है वे पे अपनो सर्वस्व लुटाए दियो। या अवसर पे परमानंद दास जी ने बड़ी सुंदर सी रचना लिखी, आनंद भरी नंद जू की रानी, फूली अंग न समाये परमानंद दास तिह अवसर बहुत नौछावर पाए। मैया यशोदा और नंद बाबा पुत्र जन्म के उत्साह उल्लास उमंग की त्रिवेणी में सराबोर है के अपनो सर्वस्व लुटावे। छठी मनाईवे को जो उत्सव है ये 16 संस्कारन में आवे है। यही संस्कार को निर्वाह तो कृष्ण जन्मोत्सव में हुए है, नंदोत्सव के रूप में होवे है। कहो गयो है, बड़ो भाग्य नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। नंदोत्सव ब्रज की बड़ी समूह परंपरा है। नंदगाम में आज नंदगाम बरसाने के गोस्वामी जन समाज गायन कर रहे हों। वाणीकारन ने रचे भये पदन में याकू बड़ो अच्छो सो स्वर दियो है। आज नंदजू के द्वारे भीर गावत मंगल गीत सवे मिल प्रगटे हैं सुंदर बलवीर। एक आवत एक जात विदा है एक ठाड़े मंदिर के तीर, एक अनको गोदान देते हैं एक अनको पहरावत चीर। एक अनको फूल माल देते हैं एक अनको धस चंदन नीर, सूरदास ने नव निधि पाई धन्य यशोदा पुण्य शरीर। ऐसो पौराणिक उल्लेख मिले है कि गर्ग संहिता अनुसार ब्रज वसुंधरा में भोलेनाथ शिव को ब्रज आगमन नंदोत्सव के माध्यम सो ही भयो। नंद के द्वारे पे मांगलिक नृत्य गान भयो तो कहा बूढ़े कहा वृद्ध कहा गोपी और गोप बालक नाचवे लगे। गोपी झमक झमक के नाचे ग्वाला गावे मीठे तान। नौ नंद उपनंद छह ब्रशवान सभी नंदोत्सव में आए। ब्रज गोपी तो कंचन थारन में मोतिन को लुटामते भई आई। याको वर्णन वाणीकारन ने करयो तो लिख्यो, आज बधाई री माई सब ब्रज छाई, सुंदर नंद महरजू के मंदिर प्रगट्यो पूत सकल सुख कंदर, जनमत ढोटा ब्रज की शोभा देखो सखी कछु औरे ओभा, द्वार बुहारत फिरत अष्ट सिद्ध कौरन संथिया चीतत नवनिध, कंचन कलश जगमगे नग के भागे हैं सकल अमंगल जग के, गृह गृह ते गोपी गमनी जब रंगीली गलेन बिच भीर भई तव, हाथन कंचन थार रहे लस कमलन चढ़ आए मानो ससी, दूध दही केसर ते मिश्रित दधि कांदो ब्रज में आज लुट रहे है। नंद रानी ने लाला जो जायो है, ब्रजवासी पीरी पीरी धोती पीरो ही पटुका पीरी पीरी बगल बंदीन को पहर के और पीरो ही फेंटा बांध के और फेंटा में हो मोर के पैंच लगाए के आनंद मगन है रहे हैं। माथे पे हो पीरो केसर चंदन लगायो है। चंदन के बारे में तो ब्रज जन याही हास परिहास को करें कि मुफत को चंदन घिस मेरे नंदन। कन्हैया की क्रीड़ा स्थली गोकुल में तो नंदोत्सव जन्माष्टमी ते एक दिना पहले ही मनायो जाए। छठी पूजन होए के नंद के लिए में हलुआ पूड़ी बटे। ऐसी मान्यता है कि लाला के जन्म के बाद यशोदा मैया छठी पूज वो भूल गई। फिर पतो चलो तो ऐसो भयो कि साल भर के बाद जन्माष्टमी आई तो ठीक बातें एक दिना पहले छठी पूजन भयो। और ये छठी पूजन यानी नंदोत्सव की परंपरा आज तक चली आ रही है। नंदगाम में कन्हैया के अवतरण दिवस और नंदोत्सव को खासो उत्साह रहे।

0: श्री कृष्ण के जन्म ते एक दिना पहले यानी सातें को सप्तमी को गिड़ोह और मेहराने जिनको के लाला कन्हैया के ननिहाल मानो जाए है गामन ते सखी मिठाई और पान बीड़ा को टोकरी छवरिया में रख के सिर पे धर के चाव लेके नंदगाम में पहुंचे। चाव बधाइन को ब्रिज में अपनो ही स्वरूप है और बड़ो अलग आनंद है। ये पूर्व में ही जो बधाई गाई जाए वासो चाव बधाई कहें। गोस्वामी सेवायतन के द्वारा सब सखियन को स्वागत सत्कार करके समाज गायन होए और नंद भवन में चाव बधाई लेके आवेवारी सखी खूब ही जमके नाचे गामे नेग न्योछावर पामे। आज ब्रिज कृष्णमय है, विश्व कृष्णमय है, हर ओर एक ही जय घोष है। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो नंद के आनंद भये, आलेख हो नीतीश कुमार को और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: देखो आपने ना जो नंदोत्सव की विलक्षण परंपरा है, जो चाव बधाई इनको उत्सव ब्रज में हो रहे हो है, बाकी बारे में ना बड़ी अच्छी अच्छी बात हमारे श्रोता भैया बहनान को बताई है। तो देखो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भैया बहना ब्रज में जो हमारे यहाँ जन्मोत्सव की परंपरा है, बाकी बारे में जान के ब्रजवासी इनकी जो परंपरागत रीति रिवाज है उनको जान के ना हमारे श्रोता भैया बहनान को बहुत अच्छा लगो हुएगो, ऐसा हमें पूरा पूरा विश्वास है।
0: जी हाँ चंपा, हमारे श्रोता जरूर आएंगे और ध्यान रखें जब श्रोता आएंगे तो नंदोत्सव में एक बहुत अच्छी जो ब्रज गोपी गांव है ना, तो चंपा जी हाँ। जो ब्रज नारी है वो गारी की तो बहुत गांव में है या समय।
1: देखो नृत्य गोपाल जी, ब्रज नारी की बात तो ऐसी है कि ब्रज धरा तो हास परिहास की भूमि है। जब उत्सवन के दौर चल रहे हैं, लोक गीत और मंगल गान गव रहे हैं, तो ब्रज की गारी कहां दूर रहेंगी।
0: जी हाँ चंपा जी, कह गए है ना कि फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी।
1: पर आप यह गारी को उल्लेख कैसे कर रहे हो, आपको कहा जन्मोत्सव को प्रसंग याद आ रहे हो।
0: अरे चंपा जी देखो, जगह जगह लोक में खूब गायो जा रहे हो ये जो गीत है, ये जो रसिया है, जसोदा ने कारी अंधेरी में जायो, याते कारो ही रंग हरी पायो।

प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये मंगल गीत सुन रहे हते। तो प्यारे भैया बहनाओं, देखो ये कृष्ण जन्मोत्सव ब्रज धरा में हो गए होए, और राधा अष्टमी को जो महा महोत्सव है बरसाना में, वाको आयोजन अभी होवे बारो है। बूढ़ी लीलान को भी जो आयोजन है वो शुरू होवे बारो है। तो प्यारे भैया बहनाओं, हम तो आपते यही निवेदन करे हैं, आपते अनुरोध करे हैं कि आप अपने परिजनन के संग, अपने इष्ट मित्रन के संग इन मेलेन को आनंद लेवे के काजे।

0: ब्रजधरा की ओर पधारो, ब्रजधरा आपको आमंत्रण दे रही है, बुलाए रही है।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही के संग आज को हमारो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुए है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता वी के तोमर के संग मो नृत्य गोपाल
0: और मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को अनुमति दो।
1: नमस्कार।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम
1: रेडियो किड्स।
0: तो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सुहानी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कई सारे दोस्तों। एक एक करके जानते हैं इनसे इनका नाम।
2: मेरा नाम है सुहाना साबरी।
3: मेरा नाम है रिया वर्मा।
4: मेरा नाम है उजैर हुसैन।
5: मेरा नाम है अरात्रिका गोस्वामी।
6: मेरा नाम है नबीहा चौधरी।
0: तो हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपके साथ आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत मजा आएगा, बहुत मनोरंजन होगा, बहुत सारी जानकारी होगी। तो चलो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं।

0: हिंदी दिवस आने वाला है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं उसके ऊपर। नबीहा, आप मुझे बता सकती हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
1: क्या हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है?
0: सही जवाब। और ये कौन बताएगा कि हिंदी की लिपि कौन सी है?
2: मैं बताऊं?
0: बताओ रिया।
2: हिंदी की लिपि देवनागरी है।
1: अच्छा, क्या मैं हिंदी दिवस के ऊपर कुछ जानकारी दूं?
0: बिल्कुल नबीहा।
1: हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 यानी 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यह दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है।
2: नबीहा, तुमने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब मैं भी हिंदी दिवस पर एक कविता लिखकर लाई हूँ, क्या मैं सुनाऊँ?
1: हाँ हाँ जरूर रिया, सुनाओ।
2: जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी।
0: अरे वाह रिया, आपने बहुत अच्छी कविता सुनी।

0: अच्छा, मैं कुछ दोहे सुनाना चाहती हूँ रहीम दास जी के, क्या मैं सुनाऊँ?
1: बिल्कुल नबीहा।
0: रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी।
1: नबीहा, आपने जो दोहे बोले वो बहुत प्यारे थे। तो आज हमारे साथ उजैर हुसैन भी है और उजैर गाना सीखता है। आप कुछ आज सुनाओगे?
2: जी हाँ, मैं एक ठुमरी सुनाना चाहूँगा।

0: दोस्तों, हमारे ये जो दोस्त उजैर है ना, वो बोलते तो बहुत कम है, पर इनकी गायकी ही इतना बोल देती है कि हम सभी के मुंह ही बंद करवा देते हैं। उजैर, आप बहुत ही ज्यादा अच्छा गाते हैं, और मैं कामना करती हूँ कि ऐसे ही आप इस कला को और भी निखारते रहे और हमें ऐसे अच्छे अच्छे गीत भजन सुनाते रहे।
1: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, मेरे पास कुछ सवाल हैं ओजोन के ऊपर, तो क्या आप सभी तैयार हैं उनका उत्तर देने के लिए?
3: हाँ
1: हाँ,
3: हाँ
1: हम
3: हम
1: तैयार
3: तैयार
1: हैं।
2: तो पहला क्वेश्चन, ओजोन परत क्या करती है?
3: मैं बताऊँ?
2: हाँ बताओ रिया।
4: सूर्य की हानिकारक यूवी रेस को रोकती है।
2: बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ होती है?
4: मैं बताऊँ?
2: हाँ बताओ रात्रिका।
4: ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है।
2: बिल्कुल सही। अब तीसरा प्रश्न, ओजोन परत किससे बनती है?
4: नहीं, मुझे नहीं पता।
2: कोई बात नहीं रिया, कोई और बताना चाहेगा?
1: हाँ, मैं बताऊंगा।
2: तो बताओ जहर।
1: ओजोन गैस से।
2: बिल्कुल सही। अब चौथा प्रश्न, ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है?
4: मैं बताऊं? क्लोरो
2: हाँ बताओ रिया।
4: फ्लोरोकार्बन।
2: बिल्कुल सही।
0: मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ
4: आप
2: पूछो।
4: पूछो। ओजोन होल सबसे पहले कहाँ पाया गया था?
1: मैं बताऊं?
0: बताओ जहर।
1: एंटार्क्टिका के ऊपर।
0: बिल्कुल सही जवाब। तो क्वेश्चंस तो हो गए, अब जानते हैं कि ओजोन होता क्या है। ये हमारी अर्थ को सूरज की हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है, जैसे एक इनविजिबल अम्ब्रेला। और ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, जो लगभग 10 से 30 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है।
2: वाह सुहाना दीदी, आपने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी।
4: बातें बहुत हो गई, चलो अब एक गीत सुन लेते हैं।
2: हाँ
1: हाँ
2: हाँ हाँ
1: हाँ

0: गीत तो बहुत अच्छा था।
1: हाँ, गीत तो बहुत अच्छा था। अब मैं कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाओ नबीहा।
1: औजारों में शक्ति जगाते, हर कठिनाई को हराते, श्रम का देते मान सदा, विश्वकर्मा है कर्म पुजारी बड़ा। मशीनों में जीवन भरते, निर्माणों को स्वरूप संवारते, प्रगति का दीप जलाते हैं, नवसर्जन का मार्ग दिखाते हैं। हर कारीगर की पहचान बने, मेहनत से जो सम्मान बने, सब मिलकर श्रद्धा से गाएं, विश्वकर्मा जी को शीश झुकाएं।
0: कविता तो बहुत अच्छी थी नबीहा।
2: हाँ, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ विश्वकर्मा पूजा पे कि वह क्यों मनाई जाती है।
0: हाँ, बताओ रिया।
2: विश्वकर्मा का परिचय है। विश्वकर्मा का वास्तुशास्त्र, शिल्प कला और तकनीकी ज्ञान का देवता माना जाता है।

0: वे भगवान शिव के वास्तुकार और देवताओं के शिल्पकार हैं। विश्वकर्मा जी को शिल्पकारों, कारीगरों और इंजीनियरों का देवता माना जाता है। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, जिसमें लोग अपने औजार, मशीनें और उपकरणों की पूजा करते हैं। यह पूजा हमें मेहनत, कौशल और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देती है। कहते हैं, मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं, इसलिए विश्वकर्मा पूजा हमें अपने कार्यों से निपुणता और समर्पण की सीख देती है। इस दिन हम अपने काम को बेहतर बनाने और सफलता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: रिया, तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी।
0: थैंक यू। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
2: हाँ, करो रिया।
0: कचरे को अलग अलग करने पर मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बताऊंगी। कचरे को अलग अलग करना हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कचरे को सही तरीके से अलग करते हैं तो रिसाइकलिंग आसान हो जाती है और कूड़ा कम होता है। इससे न केवल हमारी धरती साफ सुथरी रहती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है। जैसे हिंदी कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। कचरे को अलग अलग करने से हम पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। दूसरी कहावत है, जहाँ चाह वहीं रह। अगर हम सभी मिलकर कचरे को अलग अलग करने की आदत डालेंगे तो स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा। इसलिए कचरे को अलग अलग करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी धरती के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। याद रखें, स्वच्छता ही सेवा है।
2: लेकिन रिया, तुम कचरे के बारे में ही बात क्यों कर रही हो?
0: क्योंकि नबीहा, अभी वर्ल्ड क्लीन अप डे भी आने वाला है।
2: ओ अच्छा, लेकिन ये कब आएगा?
0: ये इस बार 20 सितंबर को मनाया जा रहा है।
2: अच्छा, तो कोई बता सकता है कि आसपास साफ सफाई रखने के लिए हमें क्या करना होगा?
3: हम अपने अपने घरों में दो कलर के डस्टबिन रख सकते हैं, एक नीला और एक हरा। नीले वाले में हम सूखा कूड़ा रख सकते हैं, जैसे पेपर या प्लास्टिक, और हरे वाले में हम गीला कूड़ा रख सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पील या फ्रूट पील या रसोई से निकला हुआ कूड़ा।
2: अच्छा, मेरे पास भी एक कविता है, क्या मैं उसे सुनाऊं?
3: सुनाओ ना बिहा।
2: जगह जगह मत फेंको कूड़ा, हो जाएगा यह दुखदाई। इधर उधर तुम देखो भालो, कूड़ा एक जगह पर डालो, रह पाएगी तभी सफाई। कूड़े से दुर्गंध खड़ी हो, बीमारी भी बहुत बड़ी हो, आसपास हो खूब सफाई, आफत आए ना बिना बुलाई। कूड़ा नियत स्थान पहुंचाए, कूड़े से फिर खाद बनाए, इसी में है निहित भलाई।
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई नबीहा आपने।

इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें थोड़ी पचाना मुश्किल होगा, इसलिए अभी के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अगले सप्ताह हमारा कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना तो आप हमें लिख सकते हैं fmgradiokids@gmail.com पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, 5:10 पर आपसे सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

众朋友们，接下来我们播送阿德的纳兰唱的一首歌曲。

0: 因都带你广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना

0: नमस्कार, स्वागत है आज नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खेल खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ सिमन सारवान। मेरे साथ मौजूद हैं
1: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल। और रविवार की शाम खेल खिलाड़ी के नाम।
0: जी, तो आज बात करेंगे विमेंस T20 एशिया कप की, महिला क्रिकेट को लेकर चलेंगे, साथ ही साथ दिलीप ट्रॉफी की भी बात होगी, चाइना मास्टर्स से आई सबसे बड़ी खबर की, यूएस ओपन को भी साथ लेते चलेंगे। और अतुल जी, क्या है आज हमारे साथ?
1: जी हाँ, उसके साथ बात करें तो PSA लंदन क्लासिकल 2026 जिसके फाइनल आज खेले जाएंगे, सिमरन उस पर भी आज अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे। इसके अलावा जूनियर एशिया कप हॉकी, वहां से भी खबरें हैं भारत को लेकर, मेंस और विमेंस दोनों वर्ग में, उसकी जानकारी भी श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा फुटबॉल की अगर बात करें तो AFC Under-20 एशियन कप क्वालिफायर्स खेला जा रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है, उसके ताजा अपडेट भी शेयर करेंगे। फुटबॉल की ही बात करें तो सुब्रतो कप Under-15 बॉयज वर्ग में आज क्वार्टर फाइनल खेले भी गए और इस समय भी क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, नॉकआउट दौर शुरू हो चुका है, श्रोताओं को बताएंगे उसके बारे में। और इसके अलावा अगर बात करें टेबल टेनिस की खबरें होंगी और साथ में होगी डायमंड लीग एथलेटिक्स से, वहां से क्या कुछ है, कल जो फाइनल मैच मुकाबले खेले गए उसको लेकर वो भी अपने श्रोताओं के साथ बताएंगे।
0: लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं हमारे श्रोताओं को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन की ओर, जहां से भारत के लिए सबसे गौरवान्वित खबर आ रही है जिसके बारे में बताएंगे अतुल जी।
1: जी हाँ सिमरन, बिल्कुल आपने सही कहा, बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और ऐतिहासिक खबर है बैडमिंटन प्रेमियों के लिए। बताएं कि भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने आखिरकार चीन मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। शेंजन में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मेजबान चीन की जोड़ी हे जी टिंग और रेन श्यांग यू को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया है। सात्विक और चिराग ने चीन मास्टर्स के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 11-21, 21-13 और 21-17 से अपने नाम किया। करीब 70 मिनट चले इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में पिछड़ने के बाद जिस अंदाज में वापसी की, उसके जज्बे और अनुभव की मिसाल काफी टाइम तक याद रहेगी। पहले गेम में चीनी जोड़ी ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा, सात्विक और चिराग अपने आक्रामक खेल को पूरी तरह लय में नहीं ला सके और पहला गेम 11-21 से गंवा बैठे, लेकिन दूसरे गेम में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सिमरन, भारतीय जोड़ी ने अगर बात करें तो इसके बाद अपनी रफ्तार बढ़ाई, नेट पर बेहतर नियंत्रण दिखाया और लगातार आक्रामक शॉट्स के जरिए चीनी खिलाड़ियों पर दबदबा बनाया। दूसरे गेम में सात्विक और चिराग ने शानदार वापसी करते हुए 21-13 से गेम जीत लिया और मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंच गया, जहां पे दोनों ही जोड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और अंत में भारतीय जोड़ी ने 21-17 से गेम जीतकर इतिहास रच दिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि सात्विक और चिराग इससे पहले 2023 और 2025 में चीन मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन दोनों बार उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा। इस बार उन्होंने उस अधूरे सपने को पूरा कर दिया है और इस तरह इस जीत के साथ सात्विक और चिराग चीन मास्टर्स का पुरुष डबल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है।
0: जी बिल्कुल, और इससे पहले कि अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जो हमारी पुरुष डबल जोड़ी है, उन्होंने चाइना मास्टर्स में फाइनल में कल जगह बनाई थी और शेनरिंग एरिना में जो खेले जा रहे ये सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के नूर मोहम्मद और अजरीन और तानवी को जोड़ी इस जोड़ी को कड़े मुकाबले में 21-16, 18-21 और 21-11 से हराया था और ये मुकाबला करीब 1 घंटे 6 मिनट तक चला था। लेकिन हालांकि पिछले अगर हम सेमीफाइनल्स की बात करें तो उसमें हमारी जो भारतीय टीम है वो रनर अप रह चुकी है, लेकिन तीसरी बार हमारी जो टीम है सेमीफाइनल में जाने के बाद आखिरकार जीत चुकी है और चाइना मास्टर्स के खिताब हमारे हमारे भारत के नाम हो चुका है। और इससे पहले सेमीफाइनल पार करने के बाद, फाइनल्स में आने के बाद, चिराग शेट्टी ने और सात्विक साईराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: Feels really good. We were out for quite some time, so playing finals back in our second tournament after the break feels really good. So yeah, feels special.
3: I think this is the whole story of this week. We have been playing first game easily, then second game we are giving away in the 15-all, 16-all. Happened from

0: I think France, second round, then quarterfinals happened again yesterday, then today also the same scenario. I think it's fine for us, as in, like, it's a good tournament for us. We are coming back from the injury. We wanted that crucial matches before playing Asian Games. We want to get that feel, get that confidence. Even when you're 16, 18, all you want to, like yesterday, we were down, then we came back and we won. So I think that kind of practice we were missing in the practice back home. I think it was good tournament for us. I think one more final here.
1: अब बात करते हैं विमेन्स T20 एशिया कप की, जिसमें कल खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान के मैच से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से कल के मैच में हरा दिया था। और बात करेंगे वहां के प्लेयर ऑफ द मैच की भी, वहां के हाइलाइट्स की भी बात होगी, साथ ही साथ बात करेंगे आज खेले जाने वाले श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच के मैच की, कुछ क्या उसके निर्णायक पल हो सकते हैं, किस तरफ खेल पलट सकता है, इस पर भी बात होगी। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट। महिला एशिया कप 2026 के नौवे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 18.1 ओवर में 55 रन बनाकर अपने न्यूनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय स्कोर पर आउट हो गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 8.4 ओवर में 3 विकेट पर 57 रन बना लिए। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी और लेग स्पिनर प्रेमा रावत की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि रावत ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। दीप्ति शर्मा ने भी 3.1 ओवर में महज 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए और शेफाली वर्मा को भी 1 सफलता मिली। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में शानदार अनुशासन दिखाया और 18.1 ओवर में कुल 78 डॉट गेंदे फेंकी। प्लेयर ऑफ द मैच रही श्री चरणी ने मैच के बाद अपने प्रदर्शन को लेकर कुछ यूं कहा।
2: इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट माई सेल्फ, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई थिंग्स, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई थिंग्स करेक्ट। सो आई थिंक प्रेमा इज सुपर्ब, लाइक नेचुरल टैलेंट शी हैज। She has everything, fielding, batting, bowling, everything. So actually in the meeting, we three sit together, me, Prema, Dipthidi and Radhadi. So we sit together and we discuss what to do. So we just try to implement here, whatever Dipthidi says, Radhadi says. Yeah. I feel 120-130 is good score on this wicket. I think yes sir, that all calls take by our management. I just try to bowl on the stems, like by seeing the pitch, we know that it may turn, so I just focused on that. Yeah, it's simple sir, one game at a time, like it's not about anything, like I'm like as I said, one game at a time, so we just focus on a game.
3: इसके अलावा शेफाली वर्मा ने 22 साल 220 दिन की उम्र में 3000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे किए। उन्होंने आयरलैंड की गैबी लुइस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल 347 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। शेफाली ने पारी की पहली गेंद पर ही छक्का भी लगाया। उन्होंने दूसरी बार यह कारनामा किया जो विमेन्स T20 में सबसे ज्यादा बार का रिकॉर्ड है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह एक ऐतिहासिक मैच रहा। कप्तान के तौर पर उनका 150वां T20 इंटरनेशनल मैच था। उन्होंने छक्के से मैच खत्म करके इस मौके को और यादगार बना दिया। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: Yeah, very important game for us, and really happy the way entire team performed today, because we talk about being ruthless, and I'm really happy the way we perform. Yeah, I mean all the bowlers, they've been outstanding. They are sticking to their plans and bowling according to their plans and reading the pitch really well. I think that is the key, understanding the pitch and then executing your plans accordingly. Well, it's very important keeping our standards high. We know what this team brings when we go to the field, and I think really happy the way everybody is coming up and showing up good performances. And now another 2 games, hopefully we'll keep playing our best cricket.
3: सिमरन, ग्रुप चरण में अजय रहने के बाद अब टीम की कोशिश की बात करें तो सेमीफाइनल में भी इसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करनी होगी। वहीं पाकिस्तान के सामने अब करो या मरो की स्थिति है और उसे हांगकांग के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करके टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखनी होंगी।
1: बिल्कुल अतुल जी, उम्मीदें तो कायम रखनी होंगी, लेकिन साथ ही साथ नजरें होंगी श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच पर भी। महिला एशिया कप 2026 का 10वां मुकाबला आज ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारत के समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। डिफेंडिंग चैंपियन

0: श्रीलंका इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई है। कप्तान चमारी अट्टापट्टू टीम की सबसे बड़ी ताकत है, जो बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। श्रीलंका के पास हर्षिता समर विक्रमा और कविशा दिलहारी जैसी मैच विनर खिलाड़ी भी हैं।
1: जी हाँ, वहीं दूसरी ओर निगार सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टीम भी संतुलित है और एशिया की मजबूत टीमों में गिनी जाती है। नाहिदा अख्तर और मारूफा अख्तर जैसे गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने के लिए तैयार नजर आते हैं। हेड टू हेड आंकड़ों में श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अनुशासन प्रिय गेंदबाजी इसे एक कांटे की टक्कर बना सकती है। जो टीम दबाव में बेहतर खेलेगी, आज जीत उसी के पाले में आएगी। जी हाँ, ये तो बात हुई एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से, और बात करें क्रिकेट की ही तो इस समय एक और महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। दिलीप ट्रॉफी के फाइनल की बात करें तो ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम में स्टेडियम में 5 दिवसीय मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां पे ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अगर बात करें दिन के खेल खत्म होने तक स्कोर की तो ईस्ट जोन ने 4 विकेट के नुकसान पर 385 रन का एक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया है, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी ने टीम की जब शुरुआत की तो एक अच्छी शुरुआत दी। 86 गेंदों में 72 रन बनाकर अभिमन्यु ईश्वरन आउट हुए, जबकि 37 गेंदों में 44 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने। इसके अलावा शिखर मोहन ने भी बेहतरीन पारी खेली, 120 गेंदों में 85 रन की। और बात करें कप्तान ईशान किशन की तो 135 गेंदों में 111 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें 14 चौके और एक छक्का भी शामिल है। और उनके साथ इस समय क्रीज पर हैं कुमार कुशाग्र, जिन्होंने 63 रन की अभी तक नाबाद पारी खेली, और तेज तर्रार पारी है जिसमें 5 छक्के और 4 चौके भी शामिल हैं। बात करें गेंदबाजी की साउथ जोन की तो काफी मेहनत करनी पड़ी, जहां पे मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर में 96 रन दिए और उनको कोई विकेट नहीं मिला। इकोनॉमी रेट भी काफी ज्यादा रहा। एमडी निधीश ने उनके साथ बॉलिंग की शुरुआत की थी और 39 रन देकर 10 ओवर में उन्होंने 39 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया। बात करें विजय की तो उनको एक सफलता मिली, जबकि मिलिंद को भी 2 विकेट मिले, जिन्होंने 13 ओवर में 56 रन दिए। इसके अलावा श्रेयस गोपाल और शाइक रशीद ने भी गेंदबाजी की, लेकिन कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। तो कल दूसरे दिन का खेल देखना होगा, ईस्ट जोन कहां तक अपनी पारी को लेकर जाता है और उसके बाद साउथ जोन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर के बाद मैच रोमांचक होने की उम्मीद है। और क्रिकेट की बात करें तो एक खबर हम अपने श्रोताओं को दे देते हैं कि सीनियर मेंस डोमेस्टिक शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें दिलीप ट्रॉफी का फाइनल ऑलरेडी खेला जा रहा है, जो कि 23 अगस्त से 10 सितंबर का शेड्यूल अगर बात करें। और ईरानी ट्रॉफी एक और टूर्नामेंट है महत्वपूर्ण, जो कि 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और 5 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। पिछले चैंपियन की बात करें तो विदर्भ एग्जिस्टिंग चैंपियन है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, उसका फेज वन 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 5 नवंबर 26 तक खेला जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 14 नवंबर 2026 से 6 दिसंबर 2026 तक का इसका टाइमलाइन निश्चित किया गया है। और रणजी ट्रॉफी का फेज टू भी खेला जाएगा 17 जनवरी 2027 से लेकर 3 मार्च 2027 तक। और बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की तो 14 दिसंबर 2026 से लेकर 8 जनवरी 2027 तक यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो बहुत कुछ है इस साल क्रिकेट में 2026-27 की बात करें। और सिमरन, क्रिकेट की खबरें हमने अपने श्रोताओं को दे दी हैं, और बात करें एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट अगर टेनिस की बात करें तो इस समय चल रहा है US ओपन टूर्नामेंट, और वहां से क्या खबर है अपने साथी सिमरन की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
0: न्यूयॉर्क में जारी US ओपन 2026 अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। टूर्नामेंट के 7वें दिन कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। पुरुष एकल में अमेरिका के वर्ल्ड नंबर 9 के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज, जबकि महिला एकल में वर्ल्ड नंबर 7 के खिलाड़ी मेडिसन कीज और वर्ल्ड नंबर 3 के खिलाड़ी अमेंडा एनामिसिमोवा तीसरे दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सबसे बड़ा उलटफेर टेलर फ्रिट्ज के मुकाबले में देखने को मिला। अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेनुंडोलो ने उन्हें 5 सेट तक चले मुकाबले मुकाबले में 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 और 6-4 से हराया। फ्रिट्ज ने शुरुआती 2 सेट जीतकर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन सेरेंडोलो ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 सेट जीत लिए। फ्रिट्ज 2026 यूएस ओपन के रनर अप भी रहे थे। पुरुष एकल में फ्लावियो कोबोली भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स ने उन्हें 4 सेट में हराकर 4th दौर में जगह बनाई। वहीं करेन

0: और उनके परिवार के सदस्यों की ये
1: फरमाइश है। मिले ग्राम ममना जिला हमीरपुर से उसको भेजने वाले रामशरण शाहिल और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लाभ्या आरब और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है मुरादगढ़ जिला करनाल से उसको भेजने वाले रमेश कुमार, पिंकी और उनका समस्त परिवार।
0: प्रियंका चौधरी को सुनना चाहते हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और उनके परिवार के सदस्य।
1: और ये अगली फरमाइश

0: कई समय मिले गांव नाई वाले जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, पूजा श्रव्या और उनके परिवार के सदस्य।
0: प्रियंका चौधरी को ही सुनना चाहते हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी।
1: अगली फरमाइश बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवार के सदस्य।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल।

0: कुमार कांतारानी और उनका समस्त परिवार।
1: प्रियंका चौधरी को सुनना चाहते हैं गांव चौलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया अपार ढींगिया और उनके परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश मिली है करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: प्रियंका चौधरी को ही सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी और उनका समस्त परिवार आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से।
1: अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और उनके परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिले बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल कौशल्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश हमें भेजिए दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश अनारकली बाजार जोगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और उनके परिवार के सदस्य।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है नलेश्वर नगर नलवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और उनके परिवार के सदस्य।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं प्रियंका चौधरी से रागनी और किस्सा रहेगा नरसी का भात। जब नरसी की बेटी अरनंदी के घर उसकी बेटी की शादी होती है तो उसकी सास ताना मारती है कि अपने घर से भात लेकर आ। तब वह कहती है कि सास मेरा तो कोई सगा भाई नहीं है और उसके जो मेरे पिता हैं वो भक्ति में लीन फकीर हो चुके हैं। तब वह अपनी सास से कहती है कि सासू ताने मत मार। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: सुनील भाई, अभी हमारे साथियों ने सुनी प्रियंका चौधरी की आवाज़ में ये रागनी, और किस्सा था नरसी के भात। और अगले जो कलाकार हैं हमारे खजान सिंह, और उनको सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश जो आई है, सबसे पहली फरमाइश जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, हिना सकीला और जस्मीन। और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू।
1: खजान सिंह कोई सुनना चाहते हैं भाई जयसपुर उत्तराखंड से, इसको भेजने वाले रियासत हुसैन, नजमा और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनके परिवार के सदस्य।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है दादा बाबू रोड से, इसको भेजने वाले हैं साई मानवाज, मोहम्मद यासीन और उनका समस्त परिवार।
0: खजान सिंह को सुनना चाहते हैं जैन मंदिर वाली गली कुराली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और उनके परिवार के सदस्य।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो कुमार एड़ा से मिली है, और इसको भेजने वाले हैं सैयद मसरूर, साइना और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और उनके परिवार के सदस्य।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है शिवानी मध्य प्रदेश से लाडले चौबे और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये फरमाइश शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान, और इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है। और
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा की।
0: अगली फरमाइश साले भाटा महासमंद छत्तीसगढ़ से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी और उनके परिवार के सदस्य।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई ये फरमाइश हमें मिली है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये फरमाइश सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेबाड़, चंद्रकला रेबाड़ और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई हितेंद्र दास की असम से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला जी की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से जॉनी डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो, विलेज डिकेस्ट्रो और डिकेस्ट्रो परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: साथ ही फरमाइश मिले पदमपुरा जिला से श्रीगंगानगर, मेहर अरोड़ा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है मुंगी पैठन महाराष्ट्र से बाबा साहेब और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: पुराना तालाब डुमराव से वलियन्ना अंसारी, आसमानाज अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जिला सिरसा हरियाणा गांव खारिया ठाणी से, और इसको भेजने वाले हैं सतवीर सिंह, देवेंद्र और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये फरमाइश आ रही है ढाणा नरसाना भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियंशा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये फरमाइश राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई खोबरखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है कस्बा बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की फरमाइश आई है, सुनना चाहते खजान सिंह को ही।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है भाई राजेंद्र कुमार के गांव उगाला अम्बाला से और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है जिला मुरादाबाद

0: ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी खजान सिंह से, और किस्सा था सेठ ताराचंद का। खजान सिंह की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नन्नल लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि 4 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां

0: की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की ने एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है। समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है। अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: प्यार भरा नमस्कार।
5: सिद्धार्थ किसान वाणी में हम अपने श्रोताओं को देंगे खेती से संबंधित जानकारी और साथ ही साथ होगा ढेर सारा मनोरंजन।
3: और पूजा, आज का दिन बहुत खास है, आज शिक्षक दिवस है
5: जी।
3: और आज हम अपने सभी किसान भाई बहनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और कल हमने जन्माष्टमी मनाया और अभी भी पूरा जो माहौल है जन्माष्टमी उत्सव में डूबा हुआ है। किस तरीके से, किस उल्लास के साथ मनाया गया है ये।
5: बिल्कुल, साथ ही साथ आज हमारे बीच हमारे खास विशेषज्ञ भी जुड़ने वाले हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मशरूम के उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के बारे में, और साथ ही साथ डिजिटल कृषि।
3: बिल्कुल, तो किस तरह से डिजिटल कृषि किसान भाइयों को उनकी फसल के उत्पादन से लेकर बाजार तक पहुंचाने में उनकी सहायता कर रही है। साथ ही मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह और साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव।
5: यानी कुल मिलाकर बहुत सारा कुछ है हमारे इस छोटे से कैप्सूल में जो आपके साथ हमें यहाँ आज साझा करना है। सिद्धार्थ, अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके हाथ में मौजूद रहती है और खास तौर से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो भी आजकल मोबाइल से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और जितनी तरह की जानकारियां और जितनी तरह की इन्फॉर्मेशन है वो भी उन तक पहुंच रही है।
3: जी बिल्कुल, तो पूजा आपने मोबाइल की बात की तो बहुत सारे तो हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो मोबाइल के माध्यम से ही हमें सुन रहे हैं, तो मोबाइल उनके हाथ में है। तो कहते हैं कि ये युग जो है वो तकनीक का युग है और आज ये मोबाइल सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए या किसी और संसाधन के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारी जानकारी जो तकनीक है इसके जरिए जो हमारी खेती है, चाहे वो उसमें मौसम की जानकारी हो, बाजार का भाव हो या फसल में लगने वाले रोग की पहचान हो, सभी जानकारी अब मोबाइल पर उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो तकनीकी है जो मोबाइल के सहारे हम उससे जान सकते हैं।
5: तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसान की जेब में जो मोबाइल फोन मौजूद है वो एक तरह से उसका डिजिटल कृषि सलाहकार बन गया है?
3: डिजिटल कृषि सलाहकार, आपने पूछा, बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है क्योंकि ये एक डिजिटल कृषि सलाहकार के रूप में मोबाइल ऐप है जिनके माध्यम से हम मंडी का भाव, बाजार में क्या कुछ चल रहा है, हम अपनी कृषि में कौन कौन सी नई तकनीक अपना सकते हैं, बारिश कैसी रहेगी, मौसम कैसा रहने वाला है, ये सारी जो नवीनतम जानकारी है कृषि संबंधी इसको हम एक डिजिटल माध्यम से जान सकते हैं।
5: बिल्कुल, बहुत सारी बातों का सिद्धार्थ तुमने जिक्र किया, लेकिन हमारी जो फसलें हैं अगर वो खराब हो, उनमें रोग आ जाए या कीड़ा लग जाए, तो क्या ऐसे में भी हमारा ये जो डिजिटल कृषि सलाहकार है हमारी मदद कर पाएगा क्या?
3: बिल्कुल, अगर फसल की आप तस्वीर ले लें, उस कीट की तस्वीर ले लें, तो विशेषज्ञ की सलाह आपको मिल जाती है। जैसे कि किसान कॉल सेंटर की हम बात करते हैं, आप समस्याओं को वहां से आप पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध हैं हमारी डिजिटल तकनीक के जरिए। और इसके अलावा आज हम खेती में ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ये भी एक डिजिटल तकनीक का अच्छा उदाहरण है। और ड्रोन दीदी के बारे में तो आपने सुना ही है।
5: बिल्कुल, ड्रोन दीदी के बारे में हम सभी जानते हैं और ड्रोन से एक बड़े हिस्से में फसल की निगरानी उससे की जा सकती है और जरूरत के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं, दवाइयों का, कीटरोधी जो हमारे रसायन होते हैं उनका छिड़काव भी हम कर सकते हैं। मेहनत की बचत भी होती है, समय की बचत भी होती है और संसाधनों का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
3: पूजा, ये तो बात हुई डिजिटल कृषि की, लेकिन अगर तो डिजिटल कृषि का जो उपयोग है वो हर क्षेत्र में हो रहा है और आज की तारीख में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर एक बहुत सारी संभावनाएं हैं और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी मशरूम उत्पादन तकनीक की प्रसंस्करण और उसकी मार्केटिंग की।
5: बिल्कुल, स्वाद की अगर हम बात करें तो खाने का स्वाद उससे बढ़ता ही है, साथ ही साथ इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। तमाम तरह के जो रेस्टोरेंट हैं वो अलग अलग तरह की डिशेस बनाकर सर्व कर रहे हैं, तो मशरूम का जो उत्पादन

0: सौंदर्य और कंजम्पशन में भी बढ़ावा देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों को आज मशरूम के उत्पादन, इसकी तकनीकी, इसका प्रसंस्करण और इसकी बाजार से जुड़ी हुई बातें, और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुभाष चंद तिवारी, जो कि वैज्ञानिक हैं NHRDF नई दिल्ली में।
2: डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि ये जो मशरूम होता है ये क्या होता है और आज के समय में इसका उत्पादन इतना ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण हो गया है।
3: मशरूम एक प्रकार का कवक है जिसको एक बंद कमरे में आसानी से उसको हम उगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे किसान भाई थोड़ा सा जानकारी लेके मशरूम को उगा सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा फंगस है, ऐसा कवक है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पौष्टिक आहार या प्रोटीन, विटामिन, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसके उत्पादन जो है एक छोटे से कमरे में, चाहे कच्चा घर हो, चाहे पक्का घर हो, चाहे छप्पर ही क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से इसको कोई भी किसान भाई या कोई भी इसको कर सकता है। चाहे वो गाँव में रह रहा हो, चाहे शहर में रह रहा हो, चाहे अर्बन इलाके में रह रहा हो, तो बंद कमरे में बहुत आसानी से इसको जो है उगाया जा सकता है।
2: जी हाँ, और अगर हम इसकी उत्पादकता की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम इसमें इसकी क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं कि मशरूम में क्या क्या हमें गुण मिलते हैं, अगर हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहें तो।
3: मशरूम में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं, अगर एक एक बात करें, जैसे हम मान लें प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन तो सभी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन मशरूम के अंदर जो प्रोटीन होती है वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है उसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट करता है, या उसको कह लें एक तरह से एब्जॉर्व कर लेता है। तो कहने का मतलब अगर हम हमारी जो दैनिक आवश्यकता है प्रतिदिन प्रोटीन की, तो थोड़ा सा भी अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा शरीर उसको आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे शरीर की जो पूर्ति उससे हो जाती है। उसी प्रकार से विटामिन की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे विटामिन के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की दैनिक कार्यों के लिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है उसकी। उसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। इसमें खाली वही विटामिन नहीं पाए जाते हैं जो फैट में घुलनशील है, क्योंकि इसके मशरूम के अंदर वसा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसमें वह विटामिन नहीं पाए जाते, जैसे विटामिन ए है जिसमें उसकी मात्रा बहुत ना के बराबर होती है। और इसके अलावा बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं आज की डेट में खनिज लवण की हर चीजों में नहीं होता है, तो मशरूम में हमारे प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होता है, वो हमारी जो आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, चाहे वो विटामिन सी की बात कर लें, चाहे सिलेनियम की बात कर लें, या कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रिकमेंडेशन में आता है कि जैसे जो बीपी के पेशेंट है उनको बहुत सारी चीजें मना हो जाती है नहीं खाना है, डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको बहुत सारी चीजें मना हो जाती है, इसमें यह सब चीजों का जो है एक रिकमेंडेशन में आ जाता है। और सोडियम और पोटेशियम, इस रेशियो में होता है कि पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है, तो कहने का मतलब यह एक बैलेंस वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है और इसको हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं।
2: जी, और अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी मशरूम की जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं जिनका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है?
3: वैसे तो मशरूम की 2500 से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं, लेकिन उसमें कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो व्यावसायिक स्तर पर खेती की जा रही हैं। उसमें से नंबर एक है बटन मशरूम। बटन मशरूम की खेती के लिए हमें 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है और 80 से 90% ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी खेती हम अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक बहुत आसानी से कर सकते हैं सीजन में, मतलब बिना किसी चीज़ की व्यवस्था किए हुए। अगर हम इसी को आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं तो बटन मशरूम को 12 महीने हम ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है आयस्टर मशरूम, जिसको हिंदी में हम ढिंगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती के लिए हमको 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है, और इसको जो हम मई और जून के महीने में, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, छोड़ के बाकी 10 महीने हम बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमारे देश का थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज करता है, कहने का मतलब अप्रैल मई जून का महीना आता है, उस समय हम जो है मिल्की मशरूम या पैडिस्टर मशरूम खेती करते हैं। इसकी खेती के लिए हमको 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है और ह्यूमिडिटी हमको 80% से ज्यादा चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो मेडिसिनल वैरायटी हैं, चाहे वो गनोडर्मा हो, चाहे सिटाके हो, या इनोकी मशरूम हो। आज की डेट में हमारे देश में व्यावसायिक स्तर पर 5 से 6 वैरायटी जो आसानी से ग्रो की जा रही है, हमारे किसान भाई लोग कर भी रहे हैं।
2: जी, हमारे किसान भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनके मन में बहुत सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से किन किन संसाधनों की और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर वो मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो।
3: मशरूम की खेती जब भी हमारे किसान भाई इस पे डिसीजन लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमको करना है और अपनी आय हमको बढ़ानी है, तो इनके लिए जो संसाधन है, पहली बात तो जैसे दूसरी फसलों की खेती की जाती है हम ओपन में करते हैं, मशरूम की खेती के लिए हमको ओपन की जरूरत नहीं पड़ती, हमको कवर्ड एरिया चाहिए, मतलब बंद कमरा चाहिए। तो सबसे पहला व्यवस्था हमको बंद कमरे की चाहिए, चाहे वो कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो चाहे छप्पर क्यों ना, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि हमको हवा और पानी को कंट्रोल करना है। अगर हवा पानी हम कंट्रोल कर लेंगे तो मशरूम को हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और थोड़ा सा जानकारी ले ले, आस पास में कोई किसान

0: भाई अगर खेती कर रहे हैं उससे जानकारी ले सकते हैं, या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट, ऐसे कोई संस्थान है जो वहाँ पे जानकारी दे रहा है वहाँ से ले सकते हैं। सही से पानी की व्यवस्था कर लें, मीठा पानी होना चाहिए जिसका PH 7 होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे रॉ मटेरियल है, जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे वो गेहूँ का भूसा हो, धान का भूसा है, ज्वार, बाजरा, मक्का या गन्ने की खोई हो, मतलब या सरसों की तूड़ी हो, मतलब अगर उनके आसपास जो नज़दीक में है, जो सस्ते दर पर उपलब्ध है, अगर थोड़ा सा उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, उस पर इसकी मशरूम खेती वो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो है उनको यह सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम कौन सी वैरायटी कब करें और जिससे हमारी मार्केट में उसकी डिमांड भी हो और आसानी से हमारा माल जो है आसानी से बेच भी जाए।
1: जी हाँ, और अगर डॉक्टर साहब हमारे छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं, अगर वो कम लागत में मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो क्या ये भी संभव है?
0: जी, मशरूम की खेती छोटे किसान और अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए कि अच्छा अवसर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है, और उसमें उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चे कम लगते हैं और इनकम ज़्यादा होता है।
1: और अगर हम डॉक्टर साहब बात करें मशरूम उत्पादन में तापमान, नमी और स्वच्छता, इनका क्या महत्व है?
0: तापमान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मशरूम जो है बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। थोड़ा सा भी अगर आप टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है, फ्लक्चुएशन करता है, तो सीधा उसका असर मशरूम के उत्पादन के ऊपर पड़ता है। तो उसका महत्व टेम्परेचर से संबंधित है। जिस वैरायटी की जो की मांग है, वह टेम्परेचर अगर हम उसको देते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन होगा काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता, कमी में अगर आर्द्रता ठीक है, जैसे बटन मशरूम की बात कर लें, उस समय आपके कमरे में मशरूम की खेती वाले कमरे में जब मशरूम निकल रही हो, 80 से 90% होना चाहिए। अगर वह ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, मतलब 90% से 95% चला जाता है, तो मशरूम के प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है और उसका जो कलर है, उसका जो दिखने में जो अच्छा लगता है, उस पर कुछ असर पड़ जाता है। अगर 80% से कम मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है रूम में, तो उसकी जो मशरूम की जो कैप होती है वो काफी खुरदरी हो जाती है और फटने लगता है, तो जिससे मार्केट में उसका अच्छा रेट नहीं मिलता है।
1: जी हाँ, और अगर हम बात करें मशरूम की कटाई के बाद उसका प्रसंस्करण किस प्रकार करना चाहिए?
0: मशरूम की कटाई का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर आपका मशरूम बहुत अच्छा उत्पादन हो गया है और अगर ढंग से उसकी कटाई नहीं की गई, तो उसमें कटाई करते समय ही बहुत सारा आपका नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले एक सही साइज, जो मार्केट में हमारी डिमांड है, उसी साइज पे उसकी हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। और हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी सब प्रॉपर ग्रेडिंग होनी चाहिए, कि मतलब छोटी वाली मशरूम जो है उसको अलग कर लें, बीच वाली मीडियम साइज की अलग कर लें और बड़ी साइज के अलग कर लें, और ग्रेडिंग करके फिर उसकी जो है अच्छे से धुलाई करें। धुलाई करके, क्योंकि बटन मशरूम की जब हार्वेस्टिंग होती है, तुड़ाई की जाती है, यहाँ जहाँ पे उसको हम पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो हवा के संपर्क में आते ही वह हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जब ब्राउन हो जाता है तो मार्केट में उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, लोग समझते हैं कि यह खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। खाली वो चूंकि हवा के संपर्क में आने से और रगड़ खाता है, इसलिए हल्का सा ब्राउन हो जाता है। तो उसी ब्राउन को सही करने के लिए हम जो है एक प्योरीफाइड नमक होता है, जिसको हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड बोलते हैं, उसमें 1% का घोल बना के हम उसमें हल्का सा डिप कर देते हैं। डिप करके फिर उसको बाहर ले आते हैं और हल्का सा हवा हवा देने से क्या होता है, मशरूम के ऊपर जो वाटर ड्राप होते हैं वो ड्राई होता है। उसके बाद उसकी हम पॉलीथीन में अच्छे से पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान देते हैं, क्योंकि मशरूम में 90% नमी होता है, तो जब हम उसको पॉलीथीन में पैक करते हैं या पैनेट में पैक करते हैं, पानी चूंकि ज़्यादा होता है, भाप बन के बाहर आता है, तो अगर वाटर ड्राप्स उसके अंदर रहेंगे तो उसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है या ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो पॉलीथीन में हम पहले से ही उसमें 2 या 3 छेद कर देते हैं, उसके बाद हम कटाई करके उसकी ग्रेडिंग करके 200-200 ग्राम के उसके अच्छे से पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करके ही फिर हम उसको मार्केट में उसको हम पहुंचाते हैं।
1: तो इसको अगर हम लंबे समय तक हम सिक्योर करना चाह रहे हैं तो क्या कोई टेक्नोलॉजी भी अपनाई जा सकती है?
0: जी, अगर चूंकि कटाई के बाद पैकिंग होती है, पैकिंग करने के बाद मार्केट जाता है, मार्केट में फ्रेश मशरूम जाता है।
1: जी
0: अगर फ्रेश मशरूम आप मार्केट में जा रहा है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वह थोड़ा सा कम लगता है। अगर उसी को हम थोड़ा सा मशरूम को अलग प्रकार से प्रोसेसिंग कर लें, चाहे उसकी हम ड्राइंग कर लें या कैनिंग कर लें या उसकी फ्रीजिंग कर लें, तो इससे क्या होगा, उसको सेल करने का हमको थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है। समय मिल जाने की वजह से उसकी जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या इसके अलावा हम कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के और हमारे पास फिर 6 महीने से लेकर 9 महीने या 1 साल तक हमको समय मिल जाता है, तो जिससे इसके अच्छी मार्केट वैल्यू मिल जाती है।
1: जी हाँ, और अगर हम किसानों की आय को बढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर मूल्य संवर्धन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो किस तरह से किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है?
0: किसानों को इसके लिए एक अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत अलग अलग संस्थाएं जो इसका प्रशिक्षण दे रही हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आप जो है सबसे पहले उसके हम बिस्किट बना सकते हैं, मशरूम के काइडिंग बना सकते हैं, मशरूम के अचार बना सकते हैं, मशरूम के सूप बना सकते हैं, मशरूम का प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं, मशरूम का टॉफी, चॉकलेट और जैम, जेली,
1: सभी कुछ
0: तो
1: मार्केट में आ
0: सब
1: सकता
0: कुछ
1: है।
0: बना
1: जी
0: सकते हैं। और उसको वैल्यू एडेड बनाने से क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वह

0: तीन से चार गुना ज़्यादा हमको मिलने के चांसेस हो जाते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने प्रशिक्षण शब्द भी लिया है, तो प्रशिक्षण की भी अगर बात करें तो हमारे किसान भाई इस प्रशिक्षण को किस तरह और कितने समय में ले सकते हैं?
0: मशरूम उत्पादन और या प्रसंस्करण पर अनेक संस्थाएं जो है समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती जाती हैं। उसमें हमारा एक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी नई दिल्ली में है, यहाँ 12 महीने मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके अलावा ICRDMR सोलन हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे भी मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 महीने चलते रहते हैं। इसके अलावा उत्क्रम है और वहाँ पे भी मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। साथ ही जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो नजदीकी केंद्र पे जाके संपर्क कर ले और वहाँ पे क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसको जान के मशरूम प्रशिक्षण ले, उसके बाद ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी, ताजे मशरूम के बारे में तो सभी जानते हैं और इसकी मार्केट भी काफी बेहतर है, लेकिन अगर हम सूखे मशरूम की बात करें या सूखा मशरूम पाउडर होता है उसके बाजार की मार्केट की बात करते हैं तो उसके बारे में क्या विचार है?
0: सूखे मशरूम में भी वैरायटी वाइज इसका थोड़ा सा हमको सिलेक्शन करना पड़ता है।
1: जी,
0: जैसे बटन मशरूम की अगर बात करें, बटन मशरूम चूंकि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है, इसको लोग जानते हैं, तो हर छोटी चाहे मार्केट हो चाहे गांव हो या शहर हो, बटन मशरूम को लोग लाइक करते हैं, तो फ्रेश मशरूम आसानी से बिक जाता है। जब फ्रेश मशरूम बिक जाता है आसानी से तो ड्राई करने का बहुत कम स्कोप बनता है, क्योंकि हमारा मशरूम फ्रेश ही जा रहा है, तो फ्रेश पे जो कि 90% पानी है, तो उसको हमको जो है ज्यादा हमको वैल्यू मिलने के चांसेस है। दूसरी वैरायटी आती है ऑयस्टर मशरूम, इसकी खेती जो है मई जून महीना छोड़ के बाकी महीने आप खर्च सकते हैं। इसकी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा हाई है और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी यह वैरायटी उतना पॉपुलर नहीं जितना वैरायटी बटन मशरूम पॉपुलर है, तो इस मशरूम को प्रोडक्शन करके हम अच्छे से इसको सुखवा सकते हैं, क्योंकि इसके मार्केट में ड्राई की भी डिमांड है और इसका पाउडर फार्म में भी इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है।
1: जी हाँ, अगर हम समस्याओं की बात करते हैं, चुनौतियों की बात करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे किसान भाइयों को फेस करनी पड़ सकती है?
0: मशरूम की खेती में सबसे पहले प्रॉब्लम कि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आपका व्यवसाय सफल होने में चांसेस बहुत कम है, नंबर एक। नंबर दो, आपके द्वारा जो मशरूम हाउस के अंदर जो क्रिया की गई, चाहे तापक्रम देना हो, चाहे ह्यूमिडिटी देनी हो, चाहे हवा का सर्कुलेशन देना हो, अगर वह पूरी जानकारी नहीं तो अभी आपके लिए चैलेंज हो जाता है। दूसरा, बायोटिक फैक्टर में आता है। बायोटिक फैक्टर में जैसे फंगस के थ्रू बीमारी आ सकती है, आपको जो है बैक्टीरिया के थ्रू आ सकता है या वायरल इन्फेक्शन के थ्रू बीमारी आ सकती है उसके अंदर, तो अगर आपके पास जानकारी है चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके सिम्टम्स को जब आप पहचान जाएंगे, पहचान के उसके निवारण पे आप जा सकते हैं और उसका जो है सोर्स कहां से है, कोई बीमारी कहां से आ रही है, कोई चैलेंजेस कहां से आ रहे हैं, उसको आप पहचान लें और वहां से उस पर हम ट्रीटमेंट का काम करेंगे। दूसरा, उसका सिम्टम्स पहचान जाएंगे, जब हम सिम्टम पहचान जाएंगे तो कौन सी दवाई या क्या उसका निवारण हो सकता है तो उसी समय पे हम उसका कर देंगे, तो बहुत जल्दी इसका हम निवारण कर सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज केवल इतना है आप थोड़ा सा जानकारी लें, जानकारी बात ही इस पर आप आगे बढ़े।
1: जब हम पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, क्या उस टाइम भी हमें कुछ खास सावधानियों को ध्यान में रखना है?
0: जी, पैकेजिंग करते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा, मार्केट में फिर लोग उसको जानेंगे फिर उसको लेंगे भी। तो पैकिंग करते समय आपका जो भी प्रोडक्ट हो, पहले बात तो नंबर एक क्वालिटी का होना चाहिए पैकिंग करते समय। दूसरा, उस पर जो आप ब्रांडिंग करते हैं प्रॉपर उस पर नाम होना चाहिए, क्या नाम है, कौन सी वैरायटी है, कौन सी स्ट्रेन है, किस डेट को आपने हार्वेस्टिंग किया है, उस पर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। प्लस उसके अंदर ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं, अगर उस पर आप लिख देंगे मेंशन कर देंगे तो जो है लोगों को पता चलेगा उसके क्या क्या रेसिपियाँ बना सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, उस पर अगर स्पष्ट लिखा हो, और उस प्रोडक्ट की वैलिडिटी कितना है, अगर आप उसको एक दिन रख सकते हैं, दो दिन रख सकते हैं, तीन दिन रख सकते हैं, होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम मशरूम उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाने से पहले किसान को बाजार के संबंध में कौन कौन सी जानकारी जुटानी चाहिए, यानी किसान भाई क्या जानकारी पहले से ही इकट्ठा कर ले ताकि उन्हें आगे नुकसान ना हो?
0: मशरूम की खेती चूंकि एक टेक्निकल खेती है और हाई वैल्यूड प्रोडक्ट,
1: जी
0: मतलब खर्चा भी ज्यादा लगता है एक तरह थोड़ा सा देखा जाए, और मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है। अगर हमारे किसान भाई व्यवसायिक स्तर पर इसकी खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आइडियल जो स्ट्रक्चर होता है वो 30x60 का होता है। अगर वो झोपड़ी भी लगा रहे हैं तो 30 फीट चौड़ा 60 फीट लंबा की झोपड़ी में अगर वो काम करते हैं तो उनमें लगभग 80 क्विंटल गेहूं का भूसा आ जाता है और इसमें लगभग एक महीने तक 1 क्विंटल मशरूम आसानी से प्रोडक्शन हो जाता है।
1: क्या मशरूम उत्पादन के साथ प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को जोड़कर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मशरूम एक ऐसा खेती है और इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो हम इसको थोड़ा सा जानकारी लेके हम अपना व्यवसाय तो कर ही सकते हैं, अपने व्यवसाय के साथ साथ हम 10 आदमी को और रोजगार दे सकते हैं। और 10 प्रकार के रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैन पावर की आवश्यकता बढ़ती है, तो मैन पावर के साथ साथ जो आवश्यकता बढ़ती है उसकी एक पूर्ति हो जाती है। दूसरा, जो हम प्रोडक्ट पैदा करते हैं मार्केट में बहुत दूर तक जाता है, तो उससे भी लोगों को एक प्रकार का बिजनेस मिलता है और रोजगार मिलता है, तो इसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है।

0: सरकार या कृषि संस्थानों की ओर से क्या मशरूम उत्पादन के लिए किसानों को किस प्रकार का प्रशिक्षण और सहयोग मिलता रहा है?
1: भारत सरकार हमारे किसान को प्रोत्साहन देने के लिए मशरूम की खेती पे बहुत प्रकार के अनुदान दे रही है। उसमें जो है, जो भी किसान भाई जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर के पास जाएं, उनसे थोड़ा सा बात करें, वो बताएंगे कि उनके जिले में कौन कौन सी स्कीम चल रही है। इस पे जो है, छोटे जो किसान हैं उनको जो है एक झोपड़ी के ऊपर सरकार जो है 2 लाख रुपये तक अनुदान दे रही है, कुछ कंडीशन के साथ है। तो जब वहाँ जाएंगे तो वो जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है प्रसंस्करण और उत्पादन तकनीक दोनों पे जो है मशरूम पे अनुदान दे रही है, जिसपे 30% से लेकर 40% तक अनुदान, उनकी लागत
0: जी
1: अनुदान दे रही है।
0: जी
1: इसके अलावा मुद्रा लोन है, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपए तक लोन दे रही है मशरूम पे, बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। तीसरा जो है एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट दे रही है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जानकारी लेके, और अगर उनके पास कम पूंजी है तो भारत सरकार की सहायता से भी पूंजी लगा के जो है अच्छा व्यवसाय वो कर सकते।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आज आपने इतनी अच्छी सुंदर जानकारी दी मशरूम का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और व्यावसायिक उत्पादन के विषय पर। और हमारे बीच थे आज जो डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी, जो कि सहायक निदेशक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी दिल्ली से हमारे साथ रहे।
2: ये जानकारी तो बहुत रोचक रही जो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की। और अब सुनवाते हैं कृष्ण भजन, कलाकार है उदयपाल।

0: तो श्रोताओं, उदय पाल के द्वारा गाया कृष्ण भजन था। और जन्माष्टमी के आसपास मौसम की बात करना लाजिमी हो जाता है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है।
1: मौसम की बात की है तो फिर फसल और कृषि संबंधी सलाह देना भी हमारे किसान भाइयों के लिए जरूरी हो जाता है। धान की फसल की अगर हम बात करें तो धान इस समय वानस्पतिक वृद्धि और बाली निकलने की अवस्था में है। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी ज्यादा न टिकने दें, ऐसा हम किसान भाइयों को कहेंगे। निकासी की उचित व्यवस्था रखें। तना छेदक और भूरा फुदका कीट की निगरानी के लिए खेतों का आप लगातार निरीक्षण करते रहें। और जहां तक सब्जी वर्गीय फसलों की बात है तो बैंगन, टमाटर, गोभी और पत्ता गोभी में कीटों की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप यानी प्रपंच का उपयोग आप कर सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों जैसे कि लौकी, तुरई आदि की बात करें तो जमीन से ऊपर बांस या मचान के सहारे इसे उठाएं।
0: तो ये तो हो गई कृषि से संबंधी सलाह। और अब वक्त है आजादपुर मंडी में फल और सब्जी की मंडी भाव क्या चल रहे हैं। आलू 18 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 रुपए प्रति किलो, टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो, खीरा 25 रुपए प्रति किलो, भिंडी 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है।
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, और सब्जियों के साथ साथ फलों का भाव भी हम जान लेते हैं। केले 30 रुपए प्रति किलो, सेब 100 से 150 रुपए प्रति किलो, पपीते की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो और अमरूद 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव से उपलब्ध है।
0: तो श्रोताओं, चलते चलते आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपके जो सुझाव हैं, जो प्रतिक्रिया हैं, आप हमें ईमेल के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। हमारा पता है feedback@gmail.com। इसी के साथ किसान बहनों और भाइयों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त शाम के 7:35 होने को है। आइए सुनते हैं गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम।

श्रोताओं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और गज़लों पर आप केंद्रित कार्यक्रम सुन रहे हैं। जगजीत सिंह की आवाज़ में भी आपने सुनी ये गज़ल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गज़ल गुलाम अली की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। नई दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत ढही, दो लोगों की मौत और सात घायल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार

0: बैठक में कहा, बैठक का उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हुई जबकि 7 लोग घायल हो गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शाम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे तेजी से बचाव कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करें। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और सुरक्षित बचाव पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF के महानिदेशक से बात की और हालात का जायजा लिया। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं और घायलों को हर जरूरी मेडिकल सहायता दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए NDRF के महानिरीक्षक NS बुंदेला ने बताया कि 70 कर्मियों वाली NDRF की 2 टीमें अभी घटना स्थल पर काम कर रही हैं।
1: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि स्थानीय जांच में पता चला है कि इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी। पुलिस ने कहा कि घटना के समय इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर 18 दमकल गाड़ियां तैनात की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाम शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छ व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क संपर्क को और मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित BB ब्लॉक की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए AF ब्लॉक तथा शालीमार बाग के C और D ब्लॉक की मेन रोड पर खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्यों का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से रिंग रोड तक नई सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने YP ब्लॉक के 3 और WP ब्लॉक के 10 पार्कों में होने वाले सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विकास को केवल बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित न रखकर हर गली, हर कॉलोनी और हर नागरिक तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। आदित्य के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: राजधानी दिल्ली को देश की स्टार्टअप और इनोवेटिव राजधानी बनाने की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक में सहभागिता की। नई दिल्ली में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा यूथ फॉर गवर्नेंस के सहयोग से आयोजित इस बैठक में देश के प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों और उद्यमिता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उद्योग जगत तथा स्टार्टअप समुदाय से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त करना और राजधानी में एक मजबूत और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना रहा। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बड़े खुशी की बात है कि दिल्ली के युवा

0: गांव से सरकार ने जो वायदा किया था उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत दिल्ली के स्टार्टअप्स के लिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और स्कूलों में इनक्यूबेशन सेंटर खोलने का समाधान सोचा था।
1: हम दिल्ली के युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से हर उस स्टार्टअप को सरकार का बैकअप मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत कुछ करना चाहता है इनोवेशन में और अपना एक पूरा डोमेन डेवलप करने के लिए हम उसे सपोर्ट करेंगे। सरकार की ये पॉलिसी बहुत आगे जाएगी और सभी युवा इससे जुड़ेंगे।
0: वहीं दिल्ली के शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि इस नीति के माध्यम से दिल्ली सरकार का उद्देश्य 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और मदद करना और साथ ही 4,00,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
2: देश के बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स जिन्होंने दिल्ली से अपने स्टार्टअप को शुरू किया, ऐसे लोगों के साथ इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार की कल्पना है कि हमारे प्रयासों से सरकार के इस कार्यकाल में हमारी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को हम मदद कर पाए।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रिहर्सल के दौरान शहर के 22 स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन और वाहनों की आवाजाही को रोका गया। नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने आगामी ब्रिक्स समिट के मद्देनजर नई दिल्ली एनडीएमसी के निवासियों से यह अपील की है कि वे अपने मोहल्ले में स्वच्छता के लिए एक मुहिम चलाएं। इसके अलावा श्री द्विवेदी ने बाजार के सभी दुकानदारों, सभी होटलों और संपत्ति के मालिकों से भी आग्रह किया है कि वो इलाके में सफाई अभियान आयोजित करें और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के 40वें रविवार के अवसर पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री चहल ने कहा कि लगातार 40 रविवार से चल रहा यह अभियान इस बात का एक प्रमाण है कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल सरकारी प्रयास नहीं है बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक सतत अभियान बन रहा है। श्री चहल ने कहा कि पौधा लगाना सिर्फ एक शुरुआत है, असल जिम्मेदारी उसे जीवित रखकर एक मजबूत पेड़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और आवासीय कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नागरिक समस्याएं श्री चहल के समक्ष रखी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दिल्ली सरकार ने आज वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और नागरिकों तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित यह अभियान इस महीने से मार्च 2027 तक साथ निभाएं प्रदूषण घटाएं विषय के अंतर्गत चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: इस अभियान के माध्यम से राजधानी के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, उद्योगों, समुदायों और नागरिकों को एकजुट करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ वायु के लिए एक निरंतर तथा सामूहिक जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। सरकार ने बताया कि आने वाले महीनों में दिल्ली भर में जागरूकता, संवेदनशीलता और हितधारक सहभागिता से जुड़े विभिन्न गतिविधियां की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों, उद्योगों, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशनों, बाजारों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, किसानों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों को लक्षित गतिविधियों के माध्यम से अभियान से जोड़ा जाएगा। जनसंपर्क को और व्यापक बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन काय तथा अन्य रचनात्मक संवादात्मक गतिविधियों का भी उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण से संबंधित जानकारी और उससे समाधान को प्रत्येक नागरिक के लिए सरल बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए निरंतरता के साथ कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।

0: कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में अवैध रूप से रह रहे युगांडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये विदेशी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा और पहचान दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज नजफगढ़ रोड स्थित राजौरी गार्डन मार्केट चौराहे में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली आबकारी विभाग ने लंबे समय से विभिन्न पुलिस थानों और उनके आसपास पड़े 2000 से ज्यादा जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की है। इसके साथ ही विभाग ने आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला में लगभग 5000 से अधिक लंबित पुलिस मामलों से जुड़े रासायनिक विश्लेषण का पूरा बैकलॉग समाप्त कर सक्रिय लंबित मामलों की संख्या 0 कर दी है। राजधानी के कई क्षेत्रों में आज सवेरे हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत और 7 घायल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं जानवी सिंह।
7: माँ भारती, माँ शारदे का वंदन करती हूँ। सभी गणमान्य अनुभवी व प्रबुद्ध रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीत गजल मतला मक्ता, गीत गजल मतला मक्ता से ही हर दिन हर रात करेंगे हम उपहार ना जाने कोई, शब्दों की सौगात करेंगे हम तो हैं साहित्य पुजारी, हम क्या जाने दुनियादारी। हम तो हैं साहित्य पुजारी, हम क्या जाने दुनियादारी, केवल कविता के साधक हैं, कविता की ही बात करेंगे।
3: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह।
7: और इन्हीं पंक्तियों के साथ सर्वप्रथम मैं हमारे आज के सभी श्रेष्ठतम व गुणी रचनाकारों से आप सबका परिचय कराना चाहती हूँ। इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है आदरणीय प्रमोद शर्मा का। आप एक बहुत ही जहीन, बहुत ही उम्दा गजलकार हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को हमेशा नई दिशा देने के मार्ग में अग्रसर रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी काव्य गोष्ठी में। इस कड़ी में जो दूसरा नाम है वो है कवित्री आदरणीय खुशबू जैन। और जैसा कि आपके नाम में ही विदित है, बिल्कुल उसके अनुरूप आप अपनी कविता रूपी खुशबू को हमेशा अपने आसपास समाज में, गोष्ठियों में, मंचों पर बिखेरती रहती हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आपकी कविता की खुशबू आज हमारी काव्य गोष्ठी में बिखरेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद।
7: और अब

0: आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहती हूँ जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: बहुत
0: हमारी
1: बहुत
0: काव्य
1: धन्यवाद,
0: गोष्ठी में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चार पंक्तियों से आदरणीय प्रमोद शर्मा जी को आवाज देती हूँ। महफिलों को जो सजा दे एक गजल ऐसी कहो, महफिलों को जो सजा दे एक गजल ऐसी कहो, सोई सी हसरत जगा दे एक गजल ऐसी कहो। बज्म भी है नज्म भी है बहुत दिलकश समा, बज्म भी है नज्म भी है बहुत दिलकश समा, दिल को जो दिल से मिला दे एक गजल ऐसी कहो।
1: वाह वाह, क्या कहने। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और गजल का मतलब देखें कि
0: जी
1: उसकी आमद से हैं रंगीन नज़ारे सारे, उसकी आमद से हैं रंगीन नज़ारे सारे, हमने घर द्वार भी पलकों से बुहारे सारे।
2: क्या
0: क्या
2: बात,
0: बात?
1: शेर देखें कि
0: सही
1: कैसे इंसान कोई उसके मुकाबिल होगा,
0: जी,
1: कैसे इंसान कोई उसके मुकाबिल होगा, देखकर जिसको के छुप जाएं सितारे सारे,
2: क्या बात है, वाह वाह
1: देख
2: वाह
1: कर
2: वाह,
1: जिसको के
2: बहुत
1: छुप
2: बढ़िया,
1: जाएं
2: बहुत
1: सितारे सारे।
0: बढ़िया।
1: और लाख समझाया है चेहरे को समझता ही नहीं, लाख समझाया है चेहरे को समझता ही नहीं, राज खोले है ये महफिल में हमारे सारे,
0: क्या
1: राज
0: बात
1: खोले है ये महफिल में हमारे
0: जी,
1: सारे। और इनके होते हुए मैं इतना अकेला भी नहीं, इनके होते हुए मैं इतना अकेला भी
0: अकेला नहीं।
1: नहीं, मैंने खत रखे हैं महफूज तुम्हारे सारे,
0: क्या
1: क्या
2: बात
1: बात
2: है,
1: है,
2: वाह
1: मैंने
2: वाह,
1: खत
2: बहुत
1: रखे
2: बढ़िया,
1: हैं
2: बहुत बढ़िया
1: महफूज
2: जी, बहुत
1: तुम्हारे
2: बढ़िया सारे।
1: सारे। और एक शेर देखें कि एक शहनशाह की मानिंद वो लौटा घर को, एक शहनशाह की मानिंद वो लौटा घर को, बिक गए मेले में आज उसके गुब्बारे सारे,
0: सारे बहुत
1: बिक
0: सारे,
1: गए मेले में आज उसके गुब्बारे सारे।
0: क्या बात है,
1: और एक शेर
0: क्या बात
1: बतौर
0: है
1: खास देखें कि कौन सा ले दूं खिलौना जो ये माँ ने पूछा,
0: जी।
1: कौन सा ले दूं खिलौना जो ये माँ ने पूछा, हो
0: क्या
1: के खुश बच्चा यूं चिल्लाया के सारे सारे,
2: बात,
1: हो के खुश बच्चा यूं
0: सारे
1: चिल्लाया के सारे
0: सारे सारे
1: सारे। और एक शेर मेरे उस्ताद मरहूम सर्वेश चंद ओसवी की शान में के, रात सपने में यूं उस्ताद की रहमत बरसी, रात सपने में यूं उस्ताद की रहमत बरसी, कान खींचे मेरे और शेर सुधारे सारे,
0: सारे,
1: कान
0: बहुत
1: खींचे
0: खूब
1: मेरे और
0: बहुत
1: शेर
0: खूब,
1: सुधारे सारे। और मकतबी देख लें कि अब असर कुछ भी जुबां से नहीं कहना पड़ता, अब असर कुछ भी जुबां
0: जुबान
1: से
0: से
1: नहीं
0: नहीं
1: कहना
0: कहना
1: पड़ता,
0: पड़ता
1: अब समझने लगा वो मेरे इशारे सारे।
0: सारे, बहुत
2: क्या
0: सुंदर,
2: बात है,
0: बहुत
2: बहुत है,
0: सुंदर,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
0: जबरदस्त
2: बहुत बढ़िया।
0: जी,
1: एक गज़ल के चंद अशार और देख लें कि जरा सा कर दे ऐ मालिक तू मोतबर मुझको,
0: क्या बात है,
1: जरा सा कर दे ऐ मालिक तू मोतबर मुझको, यहाँ से लौट के जाना है अपने घर मुझको,
2: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर,
1: जरा सा कर दे ऐ मालिक तू मोतबर मुझको, यहाँ से लौट के जाना है अपने घर मुझको, निजात दे मुझे फिर के आने जाने से, निजात
0: निजात
1: दे
0: दे
1: मुझे
0: मुझे,
1: फिर के आने जाने से, नहीं लुभाते ये नज़ारे ये सफ़र मुझको,
0: बहुत
1: नहीं लुभाते ये नज़ारे ये सफ़र मुझको।
0: मुझको,
1: एक शेर देखें कि मैं जिसको छोड़ के अब पक्के घर में आ बैठा, मैं जिसको छोड़ के अब पक्के घर में आ बैठा, अभी भी देता है आवाज़ वो शजर मुझको,
0: क्या बात है,
1: अभी भी
0: क्या
1: देता
0: क्या
1: है आवाज़ वो
0: शजर
1: शजर
0: मुझको,
1: मुझको। और कभी तो शेर में कह पाऊंगा कोई सच्चा, कभी तो बख्शेगा ऐसा भी वो हुनर मुझको,
0: बहुत
1: कभी
0: सुंदर
1: तो बख्शेगा ऐसा भी वो हुनर मुझको।
0: मुझको,
1: और मकता भी देख लें कि मुनाफिकत का ज़माना है और मैं हूँ असर, मुनाफिकत
0: मुनाफिकत
1: का
0: का
1: ज़माना है
0: जमाना
1: और मैं हूँ असर,
0: असर,
1: सता रहा है शबो रोज़ बस ये डर मुझको,
0: क्या बात,
1: बहुत
0: बहुत
1: सता
0: सुंदर,
1: रहा
0: बहुत
1: है शबो
0: सुंदर
1: रोज़ बस ये डर मुझको। एक गज़ल के चंद अशार देख लें,
0: जी,
1: मतलब देखें कि ख़राब वक्त में यारों से मशवरा करते,
2: क्या बात
1: जी
2: है, हाँ
1: ख़राब वक्त में
2: यारों
1: यारों से
2: से,
1: मशवरा करते, न बनता उनसे अगर कुछ तो वो दुआ करते,
0: जी,
1: और मरीज़े इश्क की सुनकर तबीब यूं बोला, मरीज़े
0: मरीज़े
1: इश्क की सुनकर तबीब यूं बोला, जो होता जिस्म से बीमार तो दवा करते,
2: क्या
1: क्या
2: बात है,
1: बात है,
2: वाह
1: जो
2: वाह
1: होता
2: वाह वाह
1: जिस्म से
2: वाह,
1: बीमार तो दवा करते, और गमे माश गमे ज़िंदगी गमे दौरा, एक आदमी को इतने गम कि गमे माश गमे ज़िंदगी गमे दौरा, न भूल जाते जो तुमको तो और क्या
2: क्या
1: करते,
0: क्या बात है, क्या
1: न
0: बात
1: भूल
0: है,
1: जाते जो तुमको तो और क्या
0: क्या
1: करते।
0: करते,
1: और हमारे बारे में कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, हमारे बारे में कुछ लोग
2: कुछ भी
1: कुछ
2: कहते
1: भी
2: हैं,
1: कहते हैं, वो ठहरे गैर तो गैरों से क्या गिला करते,
2: क्या बात है, बहुत
1: वो
2: बढ़िया,
1: ठहरे गैर
0: गैर तो
1: तो
2: गैरों
1: गैरों से
2: गैरों से
1: क्या
2: गिला
1: गिला
2: करते,
1: करते। और आखिरी शेर इस सिलसिले का देख लें कि किया है चरबा सदा तुमने मीरो गालिब का, या है चरवा सदा तुमने मीरो गालिब का, जमीन लेते मगर कुछ तो तुम जुदा करते,
2: क्या बात,
1: जमीन
2: बात,
1: लेते मगर कुछ तो तुम जुदा
0: जुदा
1: करते,
0: करते।
1: खराब वक्त में यारों से मशवरा करते, न बनता उनसे अगर कुछ तो वो दुआ करते।
2: वाह,
1: शुक्रिया,
2: बहुत
0: बहुत क्या बात,
1: धन्यवाद,
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा आपकी प्रस्तुति, और जो पंक्तियां मैंने आपके लिए कही आपने बिल्कुल उनको चरितार्थ कर दिया।
1: जी जी, धन्यवाद,
0: आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कहते हैं कि स्त्रियों को पारिभाषित करना कोई आसान कार्य नहीं है, किंतु जब एक स्त्री किसी स्त्री को पारिभाषित करती है तो वह किस प्रकार करती है, यह मैंने चार पंक्तियों में करने का प्रयास किया है, और वो चार पंक्तियां मैं आदरणीय खुशबू जी को समर्पित करती हूँ और उन्हीं पंक्तियों से उन्हें आवाज देती हूँ। फागुन के रंग जैसी, अपनों के संग जैसी, दिल के उमंग जैसी होती है ये स्त्रियाँ, और कोमल से अंग जैसी, नभ के विहंग जैसी, और सत्य रंग जैसी होती है ये स्त्रियाँ, छेड़ दे जरा जो इनको कोई मृदंग जैसी, फिर किसी जंग जैसी होती है ये स्त्रियाँ।
3: क्या बात है, बहुत शुक्रिया मैम इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए, और मैं सीधे ही अपनी कविता पर आती हूँ
0: जी।
3: अच्छी

है। और जब आज के समाज की पीड़ा देखती हूं तो मेरी लेखनी से चार पंक्ति कुछ इस तरह निकलती है कि चुप्पी साध लेने से बहुत संताप होता है, धर्म युग भूल कर हर गीत पर अभिशाप होता है, सिंहासन से भी करने प्रश्न खुशबू।

0: है।
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
0: चार पंक्ति की आज के समाज की, और मैं मानती हूँ कि हम पर जो सटीक बैठती है कि ज्यादा सुविधाएं अब आप लेना छोड़िए, जितेरे स्वाद लालच में कुदरत रोई है, और सड़कों पे नारे लगाने से कुछ होगा नहीं, बावले ए मानस क्यों तेरी बुद्धि खोई है, झूठा गुणगान चाटुकारिता को बंद करो, झूठा गुणगान चाटुकारिता को बंद करो, सच्चा सम्मान पाने वाला कोई कोई है, और मुझे क्या है फर्क पड़े, मेरा क्या है लेना देना, अंतरात्मा जगानी होगी जो ये सोई है, अंतरात्मा जगानी होगी जो ये सोई है। और अंतिम अपना एक छोटा सा गीत रखकर
1: जी स्वागत
0: स्थान
1: है।
0: लेती हूँ। धरा पवित्र जल रही बचाइए बचाइए, समाज की दशा दिशा का मोल तो लगाइए, बीमारियां हैं बढ़ रही वे दर्दनाक, मौत भी आग सर पे लग रही बुझाइए बुझाइए, धरा पवित्र जल रही।

समाज धरती माँ को माँ नहीं समझ रहा, कहाँ किधर वो लक्ष्यहीन हो के है भटक रहा। ये क्या हुआ है देश अपना ही पतन में गिर रहा, कुछ तो राह।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और जैसा कि आपने अपने नाम को बिल्कुल चरितार्थ किया है, आपकी कविता की खुशबू हमारी काव्य गोष्ठी में बिखर चुकी है। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
2: शुक्रिया।
1: और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुधाकर पाठक जी को। चार पंक्तियों से मैं उनको आवाज देती हूँ। वो अनुभवों की खान है, वो गीत है, वो गान है। वो अनुभवों की खान है, वो गीत है, वो गान है। वो है कभी दिनकर तो कभी पंत है, रसखान है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक छंदमुग्ध कविता आपको सुना रहा हूँ,
1: जी
0: जिसका
1: स्वागत
0: शीर्षक
1: है।
0: है
1: स्वागत
0: कोल्हू का बैल।
1: जी।
0: महानगरीय पृष्ठभूमि पर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो गांव से शहर आया, कोल्हू का बैल।
1: जी
0: गोबर से लिपे आंगन के एक कोने में साइकिल के बेकार पड़े टायर को लकड़ी के छोटे डंडे के सहारे दौड़ाते, खाने की पोटली और पानी की पुतलियां कंधे पर टांगे, सरपट पहुंच जाता था गांव से बहुत दूर, खेत में हल जोतते अपने पिता के पास।
1: जी
0: मिट्टी से सने हाथों को मेरे सर पर फिराकर जब पिताजी स्नेह से निहारते थे मेरी ओर, उनके आशीष और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठता था मेरा तन और मन।
1: हाँ
0: कभी पहुंच जाता था गांव के बाहर, बगीचे के पीछे खुले मैदान में, गोबर से कंडे पाथती माँ के पास, पीछे से मेरी भौंवों की तेज आवाज से डर जाती थी माँ, बनावटी गुस्से से घूरती थी जब वो, हंसी से लोटपोट हो लार से लिपट जाता था उनके आंचल से।
1: बहुत सुंदर।
0: बिना थके बिना हाफे दौड़कर टायर के सहारे ही चढ़ जाता था गांव के पास के सबसे ऊंचे टीले पर, मुग्ध होकर निहारता था गांव के खपरेल से बने घरों को, बहती नदी और खेतों की हरियाली को, फिर विजयी मुद्रा में जोर से चिल्लाकर खुशी से सुनता था उस प्रतिध्वनि को।
1: क्या बात है।
0: पीठ पर लदा स्कूल का भारी बस्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, घर से स्कूल की लंबी दूरी,

0: थका नहीं पाती थी, क्योंकि तब साथ होते थे हरदम वही पुराना टायर और डंडा जिन्हें छिपा देता था मैं पास की झाड़ियों में, पर सांस अटकी रहती थी उन्हीं में। गांव में इक्का दुक्का पुलिस की जीप आती जाती थी, जब ललचाई नजरों से निहारता रहता था ओझल होने तक, सोचता था तब ऐसा ही कोई वाहन मुझे ले जाएगा मुझे दूर ऊंचाइयों तक। आज कार का स्टेयरिंग है हाथों में जो रोज ले जाता है मुझे दफ्तर। हाँपते हुए चढ़ता हूँ बरामदे की सीढ़ियाँ, थका हारा लिफ्ट से पहुँचता हूँ 20वीं मंजिल पर, और जब ऑफिस के बाहर निहारता हूँ तो बहुत बेरंग और उदास पाता हूँ इस शहर को।
1: जी,
2: क्या बात है।
0: जोर से चिल्लाकर सुनना चाहता हूँ प्रतिध्वनि को, पर आवाज गले में ही घुट जाती है और प्रतिध्वनि अजन्मी ही रह जाती है। अब बहुत याद आने लगे हैं खपरैल वाले घर, अब बहुत याद आने लगे हैं खपरैल वाले घर, हरे भरे खेत, बहती नदी, वो गांव के पास का ऊंचा टीला, पसीने की बूंदों से चमकता पिता का चेहरा, बनावटी गुस्से से घूरती माँ की आंखें, पर सब कुछ कहीं खो सा गया है। अब ना वह टायर है और ना ही है वह डंडा जो ले जाए मुझे उन तक, है तो बस कार का एक स्टेयरिंग जो घुमाता रहता है मुझे गोल गोल, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, कोल्हू की बैल की तरह।
2: क्या बात है।
0: पहले मैं एक टायर दौड़ाता था, अब मेरी कार के चार चार टायर खुद दौड़ते हैं, पर मेरी गति कहाँ है। सच्चाई तो यह है कि प्रगति लील गई है मेरी गति को, पहले गति थी तो प्रगति नहीं थी, अब प्रगति है तो गति नहीं है। कविता का शीर्षक है जिंदगी।
1: जी।
0: उस पड़ाव पर जब समझ में आता है इससे और बेहतर तरीके से भी तो जिया जा सकता था, इसे तब तक मुट्ठी की रेत की तरह फिसल चुकी होती है जिंदगी। जिंदगी के उस पड़ाव पर जब समझ में आता है इससे बेहतर तरीके से भी तो जिया जा सकता था, इसे तब तक मुट्ठी की रेत की तरह फिसल चुकी होती है जिंदगी। भाग दौड़ करके इकट्ठे कर लिए रिश्ते नाते, धन दौलत भर लिए दोनों हाथों में, कहीं निकल ना जाएं, कहीं खो ना जाएं, जो से भींच लिया मुट्ठियों को, और पूरा जीवन भरे के गुमान में ही निकल जाता है और आखिर में हाथ खाली ही रह जाता है। ये ऐसा सफर है जिसमें सिर्फ चलने का गुमान होता है पर पहुँचते कहीं नहीं, गोल गोल घूमते हैं यहाँ सब बस, ना कोई सफर ना कोई मंजिल, मृग तृष्णा है जिंदगी, मृग तृष्णा।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति।
2: और चलिए अब हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं जो बहुत देर से संचालन कर रहे हैं हमारे बीच, है आदरणीय और बहुत ही सुंदर कवित्री जाह्नवी सिंह जी आपके बीच आ रहे हैं, स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ और प्रस्तुति की ओर बढ़ती हूँ।
0: स्वागत
3: है। हासिल हमें तो जमाने की खुशियाँ, है हासिल हमें तो जमाने की खुशियाँ, मयस्सर है हमको नवाबों की दौलत, मगर दिल ये अपना वहीं छोड़ आए जहाँ पर है बचपन के ख्वाबों की दौलत।
2: क्या बात।
3: वो बेली चमेली वो रातों की रानी, वो बेली चमेली वो रातों की रानी, कहाँ है वो अड़हुल गुलाबों की दौलत।
2: क्या बात।
3: कि खत अपना रखा था जिसमें दबा कर, कि खत उसका रखा था जिसमें दबा कर, हुई गुम वो अपनी किताबों की दौलत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल कहने जा रही हूँ और इस गज़ल से मुझे यकीन है कि आप सब अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
0: जरूर जरूर। स्वागत है।

0: आप सबके सामने एक और गज़ल कहने जा रही हूँ और चार पंक्तियों से शुरू करती हूँ।
1: स्वागत है, स्वागत।
0: सताएंगे जो इस कदर आप हमको, सताएंगे जो इस कदर आप हमको, जो हम रूठ जाएं तो क्या कीजिएगा।
1: वाह,
0: सताएंगे जो इस कदर आप हमको, जो हम रूठ जाएं तो क्या कीजिएगा। कि हालत ये नाजुक हुई जा रही है, कि हालत ये नाजुक हुई जा रही है, दुआ छोड़कर कब दवा कीजिएगा। इस

0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया
1: बहुत
0: आप
1: बढ़िया,
0: सबका,
1: वाह
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर।
1: बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और इसके साथ ही हमारी आज की काव्य गोष्ठी जो कि बहुत ही अच्छी रही, और हमारे साथ आदरणीय प्रमोद शर्मा सर जी, आदरणीय खुशबू जैन जी, आदरणीय सुधाकर पाठक जी, हम सब इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा बने और अब हम इस काव्य गोष्ठी का समापन करते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रही थी जाह्नवी सिंह। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म आखिरी रास्ता, और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ और साथ में एस जानकी। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:35 हो चुके हैं।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना लता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सरगम से, और इस गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और समय रात्रि के 8:41 हो चुके हैं। फिलहाल इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मिलूंगी आपसे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई,

0: जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या

0: और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
2: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू

0: सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरोपारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student-paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
3: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, whether it is the building owner or any official found responsible.

0: had targeted three oil tankers in the Strait of Hormuz and three U.S.-affiliated vessels elsewhere. Iran described the attacks as retaliation for U.S. strikes on Iranian tankers earlier in the day. The seven core OPEC Plus countries have decided to keep its oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision was taken during their virtual meeting held today to review the global market conditions and outlook. OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting came amid continued disruptions to oil exports, including those caused by the conflict involving Iran and the US and disruptions around the Strait of Hormuz. Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. The 18th BRICS Summit will bring together leaders of BRICS member and partner countries, outreach countries and heads of international organizations. As part of the security preparations, Delhi police today conducted motor carcade rehearsals and reviewed security arrangements in the national capital. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji Ting and Ring Xiang Yu 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. The victory marks the duo's 10th career title on the BWF World Tour. It is also the Indian pair's second title of the season. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. Three persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a three-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines four-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives. Calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China's Masters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं। बचाव कार्रवाई जारी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साल खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मंशियात के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल जिंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़ते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपॉलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस, स्टार्टअप्स और सनअती राबतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शेंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। आज दोपहर नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और बहुत से लोग मलबे में दब गए। दिल्ली की वज़ीरे आला रेखा गुप्ता ने जाए हादसा का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक 11 अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत पुरानी थी और इसकी तजदीद और तामीर का काम

0: जारी था। मोहतरमा गुप्ता ने कहा है कि इस हादसे के कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, खा वो इमारत का मालिक हो या कोई अफसर।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: वज़ीर आला ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और हर एक की तवज्जह लोगों को महफूज तरीके से बचाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू जाए हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका एजेंसियों को मुकम्मल तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि तेज तर बचाव कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ज़रूरतमंदों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारत मुनहदिम होने के इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम जाए हादसा पर काम कर रहे हैं और मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NDRF के डायरेक्टर जनरल से बातचीत करके सूरत हाल का जायज़ा लिया है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि मकामी इंतज़ामिया और NDRF करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई अंजाम दे रही हैं और ज़ख्मियों को सभी तरह की ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। NDRF के IG NS बुंदेला ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि NDRF की दो टीमें जो अमले के 70 अफराद पर मुश्तमिल हैं जाए हादसा पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये टीमें फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपना काम अंजाम दे रही हैं।
2: वो टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपनी कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक 6 अफराद को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि मकामी तफ्तीश के दौरान पता चला है कि यह इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी और हादसे के वक्त इमारत के तहखाने में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने का एक 3 साल खाका जारी किया। उन्होंने नशीले मादों की रोकथाम की तालमेल के साथ अंजाम दी जाने वाली कौमी सतह की एक मुहिम के लिए कहा। जनाब शाह गोवा के अपने 3 रोज़ा दौरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2019 से कानून लागू करने, एजेंसियों के माबेन एक दूसरे को सुराख फराहम करने, माली तहकीकत और बाज़ आबादकारी के इकदाम को मुस्तहकम बनाया है। 2014 से 2024 तक की मुद्दत में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले मादे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 1,89,000 करोड़ रुपए है, जबकि 48,66,000 किलोग्राम नशीले मादों को खत्म किया गया।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26,00,000 किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: जनाब शाह ने कहा कि इस खाके के 4 सुतून हैं: सुराग रसानी और कार्रवाई पर मबनी कानून का नफाज, पेशगी मालूमात और मसनूई तौर पर तैयार किए गए नशीले मादे, मांग और नुकसान में कमी, ने सलाहियत साजी और तालमेल।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। 1 इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, 2 प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, 3 डिमांड और हार्म रिडक्शन और 4 क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: हुकूमत ने अगले 3 साल में नशीले मादों के बैन अल-अक़वामी और बैन रियासती सतह के 100 नेटवर्क्स को ख़त्म करने, नशीले मादों के कारोबार में मुलविस 100 फरार अफराद को भारत लाने और नशीले मादों से मुतालिक 100 खुफिया लेबोरेटरीज को तबाह करने का मकसद तय किया है। बाद में वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इन्हदाम की जगह से बचाए गए और तिब्बी इलाज के लिए लाए गए अफराद से मुलाकात के लिए एम्स के ट्रोमा सेंटर का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी तलबा का इलाज जारी है। उन्होंने डॉक्टरों की टीम को हिदायत दी कि वो हर ज़रूरी मेडिकल इमदाद को यकीनी बनाएं। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मुतासरीन के कुनबों के साथ भी रबते में है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो सेहतमंद और उसूल पसंदाना जिंदगी गुजारें, नशीले मादों से दूर रहें और नशा मुक्त भारत की तामीर में ताबुन दें। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करें और इसे हद से ज्यादा वक्त न दें। वह आज गुवाहाटी में सेहत उलूम की श्रीमंत शंकरा देव यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के सालाना जलसे से खिताब कर रहे थे।
4: And restrict your social media usage. Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: नायब सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को उनकी पेशावराना जिंदगी से आगे बढ़कर तैयार करें और जमहूरियत और समाज के लिए जिम्मेदार शहरी बनाने पर तवज्जो दें। आज गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्वालिटी तालीम, तहकीक और किरदार साजी मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने आला तालीम में खवातीन की बढ़ती हुई हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए इसे खुशाइन तब्दीली और नारी शक्ति का इजहार करार दिया। नायब सदर जमहूरिया आज से आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। साइंस टेक्नोलॉजी और ज़मीनी उलूम के मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के तेज़ी से वसी होते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपोलिटन मरकजों से आगे ले जाने और साइंस स्टार्टअप्स और सनत के माबेन मजबूत तर राबते तश्कील देने के लिए कहा है ताकि मुल्क में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज़ के लेबोरेटरीज से लेकर मार्केट प्लेस तक के सफर में तेजी लाई जा सके। कोलकाता में आज 6ठे राइस कॉन्क्लेव 2026 के इफ्तिताही जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बात की जरूरत बढ़ती जा रही है कि दूसरे और तीसरे दर्जों के शहरों की इख्तराई सलाहियतों को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के 50 से 60% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का ताल्लुक मेट्रो शहरों से नहीं है। उन्होंने कहा कि इनमें से 15% से ज्यादा कारोबार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के नौजवान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियों में अब भी तुगयानी है और 24 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। कानपुर में 4 अफराद हलाक हुए हैं और बदायूं में शदीद बारिश के सबब हुए हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इंतजामिया ने गारा और खागरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। श्रावती जिले में राप्ती नदी के पानी की सतह में इजाफे के सबब कटाव हुआ है और आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में सैलाब से मुतासिर इलाकों का फजाई सर्वे किया और रामघाट का जमीनी मुआयदा भी किया। उन्होंने सैलाब से मुतासिर 800 कुनबों को इमदादी सामान फराहम किया और बेघर हुए कुनबों को मुतबादिल जमीन के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वजीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गंगा में बढ़ती हुई पानी की सतह के पेश नज़र नशीबी इलाकों में खसूसी निगरानी रखी जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज गिद्धों के तई बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर पंचकुला में एक कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में जनाब भूपेंद्र यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत किसी मखसूस नस्ल के जानवर के तहफ़ तक महदूद रहने के बजाय एक जामे और इको

अरिजीत दरहमीन साले 2014 मिलादी बा महबूबा दोस्त बच्चगी ये खुद कोयल राय इस दुआज कर उ दर्द उम्र आवाज खानी ये किलासी की आमोज दीदे वो हमरा बा तराने हा ये हिंदी जबान दर जमाने बंगाली नीज आवाज खान दे ऊ बेदौर मुरतब दर शो हा ये गुना गुन शिरकत मी गुना ऊ हत्ता बा मौसीगी साजान मारूफ मानंद शंकर एहसान लॉय व प्रीतम व दीगरान हमकारी नमूदे व सहम में शायानी आवाज खुद रा इराय नमूद ऊ तरान हा ये मुतादीदी रा बराये शो हा ये मुख्तलिफ टेलीविजनी नीज तरतीब दादे व बराये यक सीरियाल मारूफ बेनामे मधुबाला एक इश्क एक जुनून तराने रा खान।

فأس

وَإِنَّهُ لَفِي

Bye.

0: ये और प्रयासों के पुस्तिल गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
1: सामने आओ। अनारकली मेरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइस कन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें इसरो के निजीकरण या उनकी भूमिका कम किए जाने की बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और ना ही उसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष तंत्र तैयार करना है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिलों के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा

0: The Indian duo defeated China's He Ting and Ren Xiangyu 11-21, 21-13, 21-17. The summit clash will secure India's first ever title at the China Masters. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खास कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनते हैं गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, वो गाने जो हमें मदहोश कर देते हैं, वो गाने जिनको सुनकर हम वो एहसास लाते हैं या वो एहसास दोबारा जिंदा करते हैं जिन्हें हम काफी वक्त पहले भूल आए थे। आइए सुनते हैं खास कार्यक्रम गीत सुनहरे।

0: इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की दुखद घटना के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. A multi-story building housing a student being

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई

0: चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात करके स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिससे इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा, ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इसमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा।

गजल गीत के कार्यक्रम में आइए आगे सुनते हैं पंकज उदास और साधना सरगम को एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ।

AIR लाइव न्यू 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल। कलाकार हैं हरिहरन।

0: और इसी गज़ल के साथ आज का कार्यक्रम गज़ल गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर TM सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है NS चिदंबरम की रचना

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
2: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20:10। श्रोताओं, कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं पोन कुन्नन रामाचंद्रन का गायन। राग है मध्यमावती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पोन कुन्नन रामाचंद्रन का गाया राग मध्यमावती। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा शोल्डर मूवमेंट, कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे अशोक कुमार चौरसिया का शहनाई पर बजाया गया राग रामकली।

संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसमें आप सुनेंगे शालिनी मिश्रा के भजन। सुबह 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा। 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे शुभम कुमार का गायन, राग होगा नट भैरव। 9:15 पर कार्यक्रम होगा अवर गेस्ट, जिसकी होस्ट होंगी नीतीश अरोरा।

पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा सुबह 9:30, दिन में 10:10 पर। आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां, इसका समय रहेगा 11:10 और इसी के साथ सबरस कार्यक्रम भी सुना जा सकेगा। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजिरी के अंतर्गत राजपाल सिंह का गायन, राग होगा बसंत मुखारी।

0: दोपहर 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिदेशक NS बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वो संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कैलिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी सिक्किम के मंगन जिले में चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों का और अटकलों का स्पष्टीकरण दिया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को 11-21, 21-13 और 21-17 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Meanwhile, Delhi Mayor Pravesh Wahi has announced that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said, together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swaminarayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said, from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन

शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।